एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैसाख माह की 30वीं तिथि। तदनुसार 20 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी।

योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया। बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से कि शाम रंग में पिया मुरी रंग दे चुनरिया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से आप सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 194। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी आज सुनेगा प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुबह 7 भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनेगा त्रिवेणी। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गिरीश कर्नाड पर।

सुबह 10 बजे से सुनवाएंगे आपको पिटारा। इसके अंतर्गत सैली लॉयड के सितारे, इसके अंतर्गत सुनेगा पार्श्व गायिका कमल बरोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग, यादों की

महफिल। यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 से, सुरीला सफर दिन में 1 बजे से, दोपहर 2 बजे से सुनेगा त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 से, सखी सहेली इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे। आज के विषय हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, भाषाओं से जुड़ा संस्कार, साड़ियों का संसार, तंचोई साड़ी, शब्द हमारा, विचार आपके के अंतर्गत सद्भावना, व्यंजन के अंतर्गत ठेकुआ और दाल पीठा। संवादक है मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने।

शाम 6:30 से सुनेगा झरोखा, 6:35 से सुनवाएंगे संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम सुनेगा जयमाला शाम 7 बजे से, शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनवाएंगे आपको राग अनुराग। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा प्रहसन खरीदा हुआ दुख, लेखन शोभा रस्तोगी का, निर्देशन दुर्गा मेहरोत्रा का। और रात 8:15 से चित्रलोक। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9 बजे से, रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात, और रात 11 बजे से रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं और विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: गंगा जमुना के तट पर लगातार आपके स्वर में और आपके पिताजी के गाए भजन गूंजते रहते हैं, लेकिन आज जगत में बहुत ही कोलाहल है। जो संस्कार भजनों के हमें मिले वो नई पीढ़ी से नदारद है। ऐसे में भक्ति संगीत की ये रसधारा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, आप हमें बताएं। और कबीर के अनगिनत भजन आपने गाए हैं, तो कबीर के भजन के जरिए आप क्या संदेश देंगे?

0: सभी श्रोताओं को।
1: कबीर ने जो जो लिखा है, जो देखा है वो लिखा है। उन्होंने हमेशा समाज की सच्चाइयों को अपने भजन के माध्यम से उतारा है। तो कबीर जैसे दार्शनिक दूसरे नहीं है, कबीर जैसा यथार्थ बात करने वाला कोई नहीं है, सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम कबीर को केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी मानते हैं।
0: जी जी।
1: कुछ भजन हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, जन्म तेरा बात ही बीत गयो, मत कर मोह तू, न जाने कितने भजन हैं। मैं आपको कबीरदास जी का एक भजन सुनाता हूँ।
0: जी।

इस भजन के माध्यम से कबीर ये समझा रहे हैं कि अलग अलग अवस्था में मनुष्य अलग अलग काम करता है, एक काम करना भूल जाता है, भगवान का नाम लेना। तो इसके भी कुछ कारण होंगे क्यों भूल जाता है। उन्हीं कारणों को समझाया है कि मनुष्य क्यों भूल जाता है भगवान का नाम लेना।

0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमें। अनूप जी, आपकी भक्ति रचनाओं में जीवन दर्शन समाहित है और वो दर्शन जैसे मन में समा जाता है। तो इस वक्त कोई ऐसा भजन याद आ रहा है आपको, हमारे श्रोताओं को सुनाएं कुछ पंक्तियां?
1: कबीर को सुनाता हूं
0: जी।

0: तो श्रोताओं, कबीर की इस रचना में हम डूब गए थे, खोसे गए थे। ऐसी लागी लगन, अनूप जलोटा से बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी नवी कड़ी। अब आज की ये कड़ी बस यहीं तक।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में बरखा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

हमारी अगली पेशकश मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने इस फिल्म से भरत व्यास हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी वीर जी शाह।

0: एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में बाप बेटे इस फिल्म का गाना। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए सुरैया मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और हुसनलाल भगत राम का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम क्षमा परवाना।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गाना। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: शायरी की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ,
2: टिक टिक टिक टिक,
1: ट्रेनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे, सुलोचना कदम और साथियों की आवाज़ों में सुरंग फिल्म से शिवन रिज्वी के हैं बोल और तर्ज बनाई है पंडित शिवराम कृष्ण ने।

इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपका अपना ओम प्रकाश। नमस्ते।

सबसे पहले आज का सुविचार। श्रोता दोस्तों, सीढ़ियां अगर गंदी हो जाए तो उसे धोई या खंगाली जा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे, पीढ़ियां अगर गंदी हो जाए तो ना उसे धोई जा सकती है और ना ही खंगाली जा सकती है।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज यानी 20 मई ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 मई वर्ष का 140वां दिन है, यानी साल में अभी और 225 दिन शेष हैं। इतिहास की बात करें तो आज के ही दिन यानी 1995 में 20 मई को रूस द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष स्पेक्ट्र का सफल प्रक्षेपण किया गया।

सन 2011 में आज के ही दिन यानी 20 मई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मध्य प्रदेश के बिना में हजारों करोड़ की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की थी। यह भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, ओमान ऑयल कंपनी तथा मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से बनी विश्व स्तरीय परियोजना है। झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गर्व प्राप्त किया आज के ही दिन यानी 20 मई सन 2011 में। और अब आइए एक नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख नामों पर जिनका जन्मदिन आज है। अंजुम चोपड़ा भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और पूर्व कप्तान भी रही हैं। इनका जन्म सन 1977 में 20 मई को हुआ। गोह चोक टोंग सिंगापुर के दूसरे प्रधानमंत्री जिनका जन्म सन 1941 में आज के ही दिन यानी 20 मई को हुआ। छठवीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष थे गोदे मुरहारी। इनका जन्म सन 1926 में आज के ही दिन यानी 20 मई को हुआ। भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में एक पीरू सिंह। इनका जन्म सन 1918 में 20 मई को हुआ। और प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत जिनका जन्म सन 1900 में आज के ही दिन यानी 20 मई को हुआ। और अब आइए एक नज़र डालते हैं उन महान हस्तियों के कुछ नामों पर जो आज के ही दिन हमें अलविदा कह गए। मल्हार राव होलकर इंदौर के होलकर वंश के प्रवर्तक थे। इनका निधन सन 1766 ईस्वी में 20 मई को हुआ। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका निधन सन 1994 में आज के ही दिन हुआ। विपिन चंद्र पाल भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक रहे हैं। इनका निधन सन 1932 में आज के ही दिन यानी 20 मई को हुआ। टी प्रकाशम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्रा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका निधन सन 1957 में यानी 1957 में आज के ही दिन 20 मई को हुआ। और गया प्रसाद शुक्ल सनेही ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका निधन सन 1972 में आज के ही दिन यानी 20 मई को हुआ।

और सन 1929 में आज के ही दिन निधन हुआ राजकुमार शुक्ल जी का। ये स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक रहे हैं। और दोस्तों अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं गीत गाता चल फिल्म का एक खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद हम हाजिर होंगे स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी लेकर। फिलहाल आइए सुनते हैं गीत गाता चल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

और श्रोताओं, नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में अब आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। बात सबसे पहले सासाराम की कर लेते हैं। रोहतास जिले में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव 2026 में सभी पदों पर आरक्षण का स्वरूप बदल जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हर पद पर आरक्षण का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा, जिसमें 100% यह नियम लागू रहेगा कि पदों पर वर्तमान का निर्धारित आरक्षण हर हाल में बदल जाए। यानी आरक्षण में 50% पद महिलाओं के लिए रहेंगे। प्रशासनिक तैयारी भी जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए बदल जाएगा आरक्षण का स्वरूप। जनसंख्या के आधार पर ही नए सिरे से होगा आरक्षण का निर्धारण। बीस मई से 24 मई के बीच गरज चमक के साथ बने बारिश के आसार, हीट वेव के चलते खरीफ की तैयारी पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। 20 से 24 मई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा और आंधी की संभावना बनी हुई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं हीट वेव के चलने गर्मा फसलों के साथ आने वाली अगली खरीफ फसलों की तैयारियों को लेकर भी किसानों को एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि इस बीच जब तब आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 38 डिग्री के पार रहने का अनुमान है।

सासाराम स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के एक बॉगी शॉर्ट सर्किट से जलकर राख हो गया था, जिस कारण प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। रेलवे प्रशासन ने 12 घंटे बाद जले हुए ट्रेन की बॉगी को उक्त स्थल से स्थानांतरित कर प्लेटफॉर्म संख्या 5 के समीप बने यार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अब बात भभुआ की करते हैं। यहाँ नगर पंचायत कुदरा में सशक्त अस्थायी समिति भंग किए जाने के बाद पहली बार मंगलवार को सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें 17 पार्षदों में से 15 उपस्थित रहे। बैठक में कुल 20 मुद्दों को विचार के लिए रखा गया, लेकिन इनमें सिर्फ सफाई के मुद्दे पर ही 12 पार्षदों की सहमति बनी, बाकी 17 एजेंडों को पार्षदों ने खारिज कर दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भूमि के आंकड़े ऑनलाइन किए जा चुके हैं। पोर्टल में भूमि दस्तावेजों की लाखों एंट्री की गई है, लेकिन इस एंट्री में ही त्रुटि है। अब इन त्रुटियों की सुधार के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन की व्यवस्था लाई, जिसमें आवश्यक दस्तावेज

दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करने पर डिजिटल जमाबंदी में सुधार की जा रही है। 6879 केस अब भी पोर्टल पर पेंडिंग है, इनमें सुधार के लिए चल रहा है विशेष अभियान। रैयतों के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड में 60,000 त्रुटियां पंजीकृत।

रोहतास जिले में सफ़ेद मक्खी पहले संक्रमित पौधे की पत्तियों पर बैठती हैं और बाद में स्वस्थ पौधों पर जाकर संक्रमण फैला देती हैं। मौसम में बदलाव होने से मूंग व उड़द की फसल में पीला धब्बा रोग का प्रकोप बढ़ रहा है। हरी सब्जियों की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत। जिले के रोहतास जिले के किसानों के लिए मई माह सब्जी उत्पादन के लिए बेहतर अवसर लेकर आया है। जिला उद्यान विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप सब्जियों की खेती करने की सलाह दी है ताकि कम समय में बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। अउवा में 4 जून से होगा 27 कुंडीय श्री राम महायज्ञ। शिवसागर की बात कर लेते हैं। यहाँ मंगलवार को शिवसागर प्रखंड के आलमपुर पंचायत में जनता के कल्याण हेतु प्रखंड का पहला जन सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड स्तर के सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार के मुताबिक इस सहयोग शिविर में कुल 16 आवेदन जनता द्वारा जमा किए गए। अधिकारियों ने बताया कि आम जनता की समस्याओं को 30 दिन के भीतर निष्पादन कर दिया जाएगा। बढ़ रहे हैं मधुमेह के मरीज, बचाव के लिए संतुलित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई है। कैमूर जिला में वर्ग 9 से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10:30 तक ही संचालित होंगे, आदेश जारी। कक्षा 8वीं तक के स्कूल व आंगनबाड़ी 23 तक रहेंगे बंद। शिक्षक कर्मचारी स्कूल में ड्यूटी करेंगे। कार्यालय अवधि के दौरान विद्यालयों के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यालय कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने नियमित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं जीवन की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न जाने दें तथा पर्याप्त पानी, हल्का भोजन एवं आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित करें। तिलौथू प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन चंदनपुरा में मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से सहयोग शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता जिला भू अर्जन पदाधिकारी मोहम्मद जफर हसन ने की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही। रोहतास जिले के 18 पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए गए। 2103 आवेदनों में से 1471 का ऑन द स्पॉट किया गया निष्पादन। ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनों की समस्याओं का होगा समाधान। लंबित मामले का 30 दिनों में करना होगा निष्पादन। काराकाट में 119 मामलों का हुआ निष्पादन। प्रखंड के पंचायत भवन जैसरी के परिसर में मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन जिला बंदोबस्त पदाधिकारी नवीन कुमार, BDO राहुल कुमार सिंह व CO डॉक्टर रितेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। श्रोता दोस्तों, रोज की तरह आज भी हमारे पास है दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और अखबार हिंदुस्तान। लगभग सभी अखबारों ने पेट्रोल और डीजल को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, युद्ध का असर, तेल कंपनियों पर दबाव कम, जनता पर बढ़ रहा बोझ। पेट्रोल डीजल अब 90 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए, 5 दिन में दाम 3 रुपया 90 पैसा बढ़ गए। पटना में सामान्य पेट्रोल 109.54 रुपये, सामान्य डीजल 95.58 रुपये, प्रीमियम पेट्रोल 118.42 रुपये तक पहुंच गया। देश में फल व सब्जियां 10 से 15% तक महंगी होने की संभावना बढ़ी।

भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और अखबार हिंदुस्तान। लगभग सभी अखबारों ने पेट्रोल और डीजल को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, युद्ध का असर, तेल कंपनियों पर दबाव कम, जनता पर बढ़ रहा बोझ। पेट्रोल डीजल अब 90 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए, 5 दिन में दाम 3 रुपया 90 पैसा बढ़ गए। पटना में सामान्य पेट्रोल 109.54 रुपये, सामान्य डीजल 95.58 रुपये, प्रीमियम पेट्रोल 118.42 रुपये तक पहुंच गया। देश में फल व सब्जियां 10-15% तक महंगी होने की संभावना बढ़ी। अखबारों की सुर्खियों में है, एक प्रखंड एक डिग्री कॉलेज योजना के तहत बड़ा कदम, जून तक पूरी होगी 6656 शिक्षकों की नियुक्ति, 2026-27 से शुरू होगी पढ़ाई। राज्य के 208 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज, 9152 पदों पर होगी भर्ती। गांव में रुकेगा शिक्षा का पलायन, लेकिन जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ी है चुनौती।

दैनिक जागरण अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है, पटना समेत 11 टाउनशिप के दायरे में आए गांवों की जमीन की बिक्री पर रोक के बीच मिली राहत। आपदा या शादी के लिए बेचनी होगी जमीन तो डीएम को आवेदन देना होगा। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। सोनपुर के सहयोग शिविर में कहा, जनता का समस्याओं का समाधान सरकार की जिम्मेदारी, 30 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी स्वतः माने जाएंगे निलंबित। रेलवे में 6,565 पदों पर होगी टेक्नीशियन भर्ती, 30 जून से 29 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के जरिए चयनित होने वाले टेक्नीशियनों की तैनाती सीधे स्टेशनों और यार्डों में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के 211 ऐसे प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे जहां अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। बिहार को शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल के रूप में सरस्वती विद्या निकेतन विकसित किया जाएगा, जहां पढ़ने के लिए मंत्री से लेकर अधिकारी तक के बच्चे ललायित हों।

प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने उतरेंगी केकेआर। ईडन गार्डन में आज करो या मरो का मैच खेलने उतरेगी कोलकाता। मुंबई के लिए सम्मान रक्षा की लड़ाई।

आर्थिक जगत की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बचाएगी सरकार। दो दर्जन से अधिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम ला सकता है केंद्र। मशीनरी, केमिकल्स, प्लास्टिक व इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ी गुंजाइश। नए बूस्टर डोज की तैयारी, केंद्र और राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त औद्योगिक पार्क लगेंगे। अब 32 पैसे टूटकर 96.52 के नए निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। बिजली की मांग 2.60 लाख मेगावाट के पार। मंगलवार दोपहर 3:40 पर सर्वाधिक बिजली मांग रिकॉर्ड की गई। सोमवार को अधिकतम मांग 2.573 लाख मेगावाट रही थी।

और अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जाने आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
8: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई।

0: रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करें, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरफ माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
2: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचार के साथ हैं आनंद पाठक।
3: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
4: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
5: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो

0: एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम।

हकीकत फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कैफे आज़मी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब इसी के साथ देशभक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाइए, सुबह के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

चांदनी फिल्म का ये गीत सुनिए, पसंद आप सबों की है। जय हिंद तेंदुआ नबीनगर से गिरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सुजीत और टुनटुन। ब्रह्मपुरा मनीगाछी से आप हैं भाई अच्छेलाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम मिश्रत अक्रम, बहू रुबीना, वसीम बाबू हरीज, वसीम नवासा, अरहान बाबू नवासा, हमजा बाबू नवासा, मुजम्मिल बाबू नवासी, हुमैरा नवाज नवासी, सुमैरा नाज नवासी, अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चिना शेख, कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख और नुजहत जहां नाज, और शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शाहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज।

अब बारी है हमारे इन श्रोता दोस्तों की। फुटानी चौक नरहन एस्टेट से भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या, बीके मिश्रा और लल्लू पंडित। कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। और लेवई से आप हैं गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत प्रसाद वर्मा। आप सबों की पसंद पर हम अपने तमाम श्रोता दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: और भाई, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 10 नंबरी फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। थाना मोड़गढ़ अनोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबून निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहाँ, डब्लू अकरम नूरजहाँ, वली अकरम नूरजहाँ, उल्लाह अकरम नूरजहाँ। राजनांद गाँव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं रेशम तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी।

0: दस नंबरी फिल्म के इस गाने को हमारे ये श्रोता भी सुनना चाहते हैं। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंजाकर्षण पुंजे, जय श्री, पिंकी, रिंकी, रिकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। तो आइए सुनते हैं दस नंबरी फिल्म का ये गीत।
1: दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,
1: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ। जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको।

के बाजार से भदवा चुनरी ले आना। अरे भतीजा के बाजार से भदवा चुनरी ले आना। याद के फिर संसार को प्राणी बन में बस जाना। यदि फिर भी तू भी

0: ज्वार भाटा फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते थे। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम, शमा प्रवीण, सादिया तस्नीम और अलीशा। सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वाली डोम, कुमारी डब्लू डोम। और जेल रोड मथुरा से आप हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। और इसी गीत को सुनना चाहते थे गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, ओम प्रकाश, गुंजेश कुमार, एरिया रानी, कुमकुम, बुल्की वाली, फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। और अब इसी के साथ पसंद आपकी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विवाह और आपदा की स्थिति में टाउनशिप क्षेत्र में हो सकेगी जमीन की खरीद बिक्री, जिलाधिकारी को देना होगा आवेदन। प्रदेश के सभी नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। पटना के ईशान किशन की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चयनित। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में किसी की जमीन टाउनशिप के लिए अधिग्रहित होने की स्थिति में संबंधित परिवार को विवाह या आपदा की स्थिति में जमीन बेचने के लिए जिलाधिकारी को आवेदन देना होगा। सोनपुर प्रखंड की डुमरी बुजुर्ग पंचायत में एक कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवेदन की जांच के बाद संबंधित व्यक्ति को जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा।
1: इस इलाके में एक नया टाउनशिप बनाने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथियों। इस इलाके को समृद्ध करना है। कुछ लोगों का शिकायत हमें मिला कि यदि टाउनशिप में हमारा जमीन चला गया, हमारे घर में बेटी की शादी करनी है तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं, हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जिन लोगों को भी घर में विपदा आपदा या बेटी की शादी करनी होगी, आप जिलाधिकारी को आवेदन दीजिएगा, 4 गुना पैसा आपके घर में और आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम।
0: इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल के रूप में सरस्वती विद्या निकेतन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में सीमा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन के पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने ये निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक ढंग से अनुपालन करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीमा पर निगरानी सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। साथ ही सीमा पर होने वाले अनैतिक और गैर वैधानिक कार्यों पर पूरी सख्ती बरतें। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बीती फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के 264 नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले यह चुनाव 15 से 25 अप्रैल तक संपन्न कराए जाने के बाद अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिए गए थे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार से बीजों पर अनुदान बढ़ाने की मांग की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित कृषि क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री सिन्हा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दलहन और तिलहन फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी अनुरोध किया। कृषि विभाग ने कृषि यांत्रीकरण योजना के तहत 12 नए कृषि यंत्रों पर भी अनुदान देने का फैसला किया है। इसके तहत सौर ऊर्जा आधारित तकनीक और उच्च क्षमता वाली मशीनों, सौर धान थ्रेसर, छोटा धान कंबाइन हार्वेस्टर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों को शामिल किया गया है। वहीं कई पारंपरिक और छोटे उपकरणों को योजना की सूची से हटा दिया गया है। प्रदेश में आज शाम 7 बजे से 22 मई सुबह 8 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। नॉर्थ और साउथ बिहार पावर कंपनियों की ओर से नई बिलिंग प्रणाली तैयार करने के मकसद से ये सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान उपभोक्ताओं के स्मार्ट

रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इस अवधि में बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज और नया बिजली कनेक्शन समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री और किशनगंज जिले के प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि किशनगंज में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। किशनगंज में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि जिले में 22 पावर सब स्टेशन PSS काम कर रहे हैं, वहीं 10 अन्य PSS को विकसित करने पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी PSS के कार्यशील होने के बाद जिले में विद्युत आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रहेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर से ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा।

0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर से ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आज देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली और अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं, जिससे समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान सभी प्रमुख फार्मेसी श्रृंखलाएं, अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार और पटना समेत कई जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है।
4: दिनांक 20 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि में 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान 41.4, छपरा का 40.6 और पटना का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश के गंगा तट पर स्थित सभी मठ और मंदिरों में प्रतिदिन गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने इस संबंध में

सभी मठ मंदिरों के महंत, न्यासधारियों, न्यास समिति के सदस्यों और प्रबंधकों को पत्र भेजा है। प्रोफेसर नंदन ने बताया कि पर्षद से संबद्ध मठ मंदिरों में गंगा आरती की शुरुआत 25 मई को गंगा दशहरा के अवसर से होगी। मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र से वाहन जांच के दौरान पुलिस और एसएसबी की टीम ने 191 किलो से अधिक गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में मधुबनी SC/ST थाना के प्रभारी रविंद्र राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7,480 बोतल कोडीन युक्त सिरप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में प्रदेश के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। इधर शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और KL राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 93 रनों की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में NEET UG की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। आयोग ने कहा है कि विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से 100 विद्यार्थी इस इंटर्नशिप में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज और मानवाधिकार मुद्दों के प्रति निष्पक्ष और अधिक संवेदनशील बनाने में मदद करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने सहयोग शिविर से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पंचायतों के सहयोग शिविर में सुनी गई समस्याएं। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की हिदायत को अपनी प्रमुख खबर बनाते हुए लिखा है, 15 अगस्त के बाद बिना वजह रेफर नहीं, केवल गंभीर मरीजों को ही बड़े अस्पतालों में भेजें। दैनिक जागरण लिखता है, क्यूल झाझा तीसरी रेल लाइन को मंजूरी। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, व्हाट्सएप पर भी EPF बैलेंस और लेन देन की मिलेगी जानकारी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य के 208 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज, 9,152 पदों पर भर्ती। आज अखबार लिखता है, 12 सितंबर को भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विवाह और आपदा की स्थिति में टाउनशिप क्षेत्र में हो सकेगी जमीन की खरीद बिक्री, जिलाधिकारी को देना होगा आवेदन। प्रदेश के सभी नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। पटना के ईशान किशन की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चयनित। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अभी से थोड़ी देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे पूर्वाह्न 10:00। पूर्वाह्न 10:05 पर वापिस आकाशवाणी स्टूडियो से आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से आप सुनेंगे श्रम संसार। लोक माधुरी भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का ये कार्यक्रम 10:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे। 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार की प्रस्तुति होगी।

पूर्वाह्न 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार। पूर्वाह्न 11 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 5:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी बुलेटिन समाचार। आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से शाम 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। सांझ गीत की प्रस्तुति होगी शाम 6:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस आप सुनेंगे शाम 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हम रिले करेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से शाम 7:25 पर।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 पर रात्रि 9 आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन पर आधारित सुर सौरभ कार्यक्रम। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 11 और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आज अलका याग्निक की आवाज़ से। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है साजन।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गए सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
6: गीत मालिका कार्यक्रम में श्रोता दोस्तों, अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं आशिकी फिल्म का एक गीत। कुमार सानू की आवाज़ है, रानी मलिक हैं गीतकार और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में समीर का लिखा एक गीत, जिसे स्वरबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है बलमा।

0: बलमा फिल्म के इस गाने के साथ ही हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीत मालिका यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी मां कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा,

0: तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।
1: सर,

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ, उसका निर्देशन किया जाने मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ति, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पर आए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी।

0: इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊँ?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बली यू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

चंदनंदु कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: 510 किलोहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम श्रम संसार।
2: कार्यक्रम श्रम संसार के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आप सबों का रेडियो साथी रवि भूषण। सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। श्रोताओं, नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कानून वीवी राम जी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा। यह मनरेगा कार्यक्रम की जगह लेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। 30 जून तक मनरेगा के तहत चल रहे काम नए ढांचे में शामिल रहेंगे। ईकेवाईसी से सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक के मान्य रहेगा। अब श्रोताओं, आइए बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसका जीवन संघर्ष में बिता है। एक समय ऐसा आया कि तय करना मुश्किल था कि करें तो क्या करें। परिवार की जिम्मेवारी ने इन्हें कई काम करने पर मजबूर किया। आज ये अस्थायी रूप से सब्जी का काम करते हैं और इनके जो ग्राहक हैं वह इन्हीं से सब्जी लेना पसंद भी करते हैं। किसी कारणवश यदि इनकी सब्जी की दुकान 1-2 दिन बंद हो जाए तो लोग इन्हें खोजने लगते हैं। चेहरे पर दोनों भाई मुस्कान लिए रहते हैं और सुबह से शाम तक के सब्जी के काम में लगे रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागेंद्र कुमार और उनके भाई विक्की। अब हमारे साथ मौजूद हैं नागेंद्र कुमार, आइए उनसे करते हैं बात। तो श्रोताओं, श्रम संसार कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खिलनगंज निवासी नागेंद्र कुमार। और वर्तमान में ये क्या करते हैं और भविष्य की क्या योजना है, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। नागेंद्र कुमार जी, सबसे पहले अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से और अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नागेंद्र कुमार जी, वर्तमान में आप क्या करते हैं?
3: सब्जी का कारोबार करते हैं और परिवार का पालन पोषण उसी से होता है।
2: नागेंद्र जी, सब्जी का यह जो काम है वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से आप नहीं कर रहे हैं, पहले कोई और काम किया करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से आप सब्जी का काम कर रहे हैं और बहुत कम समय में आप काफ़ी लोकप्रिय भी हो गए हैं और लोग आपको खोजते हैं कि सब्जी लेंगे तो बिक्की के यहाँ से ही सब्जी लेंगे या नागेंद्र के यहाँ से ही सब्जी लेंगे। सब्जी का काम आपने कब से शुरू किया?
3: करीब करीब 10-15 साल हो गए।
2: नागेंद्र जी, सब्जी बेचने की योजना आपके दिमाग में कैसे आई, कैसे शुरुआत की आपने?
3: घर का खर्चा नहीं जुट पा रहा था, इसी वजह से कोई बोला कि अरे भाई पापी पेट है, कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो चलो भाई सब्जी ही बेचा जाए, तो सब्जी हम बेचना चालू किए। घर में काम दाम हो नहीं पा रहा था, पिताजी से नहीं हो पा रहा था, तो चलो भाई किसी तरह से घर का गुजारा करना है तो सब्जी ही बेचा जाए, ठीक है। और बेचते बेचते बहुत ऐसे ही करना पड़ा। फिर देखे कि दूसरे का काम करेंगे, 1 महीना भी काम किया तो पता चला कि 6,000 हुआ तो देगा या नहीं देगा उसके ऊपर डिपेंड करता। इसलिए अब सोचे कि सिंबर तो खाली हो ही जाना है, बेच बाज के सब्जी बेचना चालू किया और फिर शाम का शाम मुनाफा भी मिल जा रहा था, क्या आया क्या गया सब पता चल जा रहा था, इसलिए सब्जी ही बेचे।
2: नागेंद्र जी, जब सब्जी का काम आपने शुरू किया तो पार्टी से आपने माल उधार लिया या पैसा दे कर लिया या किसी ने आपकी मदद की, हम जानना चाहेंगे?
3: कुछ हमारे दोस्त हैं, वही हमको मदद की है, वही हमको दिवे हैं।
2: आपके मन में ख्याल कैसे आया कि सब्जी का काम करना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा है?
3: लोग बोलते हैं ना कि या तो करो नौकरी सरकारी ना बेचो रोड पर तरकारी, यही से ये मन में आया कि चलो भाई सब्जी ही बेचा जाए।
2: अपने परिवार के बारे में बताइए, परिवार में कौन कौन लोग हैं और लोग क्या करते हैं?
3: घर में तो सभी शिक्षित ही हैं लमसम ले दे के, फिर और फिर आर्थिक तंगी से हम लोग जूझ रहे थे। सभी तो पढ़े लिखे ही हैं, भाई मेरा इंटर पास है, फिर 4 भाई हम लोग हैं और 1 बहन है, सबको देख के ही करना पड़ता, सबको धीरे धीरे पढ़ा लिखा के इस तरह से हम लोग किए आगे बढ़े।
2: आगे की क्या योजना है?
3: आगे की योजना है कि दुकान खोला जाए और थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा जाए।
2: नागेंद्र कुमार जी, हम देखते हैं कि और सुनते भी हैं कि आपके पिताजी किताबों के बड़े शौकीन हैं, उनके बारे में कुछ बताइए।
3: भाई, जो आदमी एमए पास हो तो उनको सीधी सी बात है किताब से ही लगा होगा, किताब पेपर दिन भर पढ़ते हैं, इस ये मिला उपन्यास पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, काफ़ी पेपर से ही लगा हुआ है। और उनके मित्र भी आते हैं तो पेपर पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, टाइम किसी तरह समय बीत जाता है बिताने।

0: है बस।
1: और टहलते हैं, टहलते फिरते भी हैं, उसी यही उनका लाइफ है मतलब।
0: मैंने शुरू से ही यही रूटीन रहा है उनका, पहले जब काम उम करते थे पिताजी।
1: पहले काम कर रहे थे तो इस तरह से नहीं था, अब हम लोग खुद लड़के हो गए, कमाने खाने लोगे तब बाप से काम करवाना उचित तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग उनको फ्री छोड़ देते हैं। और वो काम अपने दोस्त क्या किए नहीं किए ये हम लोग पूछते भी नहीं कि क्या घाटा क्या बड़ा, फिर हम लोग गए तो फिर उनसे क्या कहा जाए।
0: नागेंद्र जी, उनका सपोर्ट अभी भी मिलता होगा आप लोगों को, मॉरली सपोर्ट तो करते ही होंगे।
1: हाँ, लम्स रहता है। देखिए, कुछ घर अगर है, फादर है तो कुछ नहीं तो घर तो लगा रहता है, भरा रहता है, इसीलिए बाप है तो सब है। और क्या, घर है, बाप रहते हैं तो देखिए कोई भी आ भी जाता है तो बोलने बतियाने के लिए उनसे बात विचार कर लेता है। अब हम लोग रहे भी ना रहे, पानी पिला देता है लोग, बुजुर्ग रहना घर में एक जरूरी है।
0: आपके पिताजी के प्रति आप लोगों का व्यवहार कैसा, घर के सारे लोग चाहे आपकी पत्नी जो है वो कितना सपोर्ट करती हैं?
1: सभी लोग ही ईमानदार हैं और स्वेच्छा रूप से देख रहे हैं कि आज हम ये करेंगे तो कल हमारा भी हाल वही होगा जो इनके साथ हम करेंगे, इसीलिए सब अच्छा से उनका आदर सत्कार करता रहता है, बोली वचन भी सबका उचित ही है। सभी लोग समय पर खाना पीना जो भी होता है जो जो अपने फादर को देना है वो सभी लोग देते हैं, और टाइम से खाना पीना, सभी बाल बच्चा सबको पढ़ाना, शाम को पढ़ाते भी बच्चा, छोटे छोटे बच्चे लोग को, किसी तरह समय पास हो ही जाता है। लमसम सब चाय पानी सब दे देते हैं लोग।
0: आप सब्जी बेचते हैं, आपका रूटीन क्या है?
1: सुबह सुबह मुँह धो के मार्केट चल जाते हैं और खरीदारी करते करते क्या 2 घंटा लग ही जाता है, लमसम 2 घंटा, फिर आते हैं फिर लगाते हैं, फिर भाई है, सुबह हम रहते हैं तो दोपहर में वो रहता है, शाम को हम रहते हैं, रात को वो रहता है, इस तरह से समय पास हो जाता है और बुझाता भी नहीं है।
0: सब्जी का काम करके आप संतुष्ट हैं?
1: हाँ भैया, संतुष्ट हैं, क्योंकि परिवार अगर हमारा चल जा रहा है सबसे अच्छा से, पढ़ाई लिखाई सबका हो जा रहा है, अच्छा से सबका मतलब हो जा रहा है, घर में सभी के लोग का हो रहा था, ठीक ही है।
0: नागेंद्र कुमार जी, और भी बड़े भाई हैं, 2 भाई आप लोग सब्जी के काम में लगे हुए हैं, और भी आपके भाई
1: हाँ
0: हैं, तो वो लोग क्या करते हैं?
1: एक हमारे बड़े भाई हैं वो पेंट का काम करते हैं, ठीक है वो कर लेते हैं, और एक भाई जो है वो दूसरा बिजनेस का काम करते हैं।
0: नागेंद्र जी, आपके बच्चे होंगे, वो बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं और आगे की क्या योजना है? एजुकेशन यानी कि शिक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं?
1: हमारे भाई का जो लड़का है वो तो नीट का एग्जाम दिया है अभी, और दूसरा जो है नेवी का तैयारी कर रहा है, और हमारे 2 बच्ची और 1 बच्चा है, बच्चा लोग भी ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छा है सब, और इस बार अव्वल भी आया सब, तो ठीक ही कहेंगे इसको।
0: नागेंद्र जी, जो आप लड़का आपके घर का है जो नीट की तैयारी कर रहा है और अभी परीक्षा उसने दिया है, वो तैयारी कहाँ से करता है?
1: तैयारी तो भैया घर से ही कर रहा है, और कुछ थोड़ा बहुत मोबाइल पर ही तैयारी कर रहा है, जो खान साहब है ना, खान साहब उन्हीं से मतलब सपोर्ट में है और तैयारी कर रहा है, सस्ता भी है, पढ़ाई के प्रति उसका लगाव भी बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी में पढ़ाई के प्रति उसका अच्छा लगाव है, नीट का भी एग्जाम भी दिया है, दूसरा नोएडा का भी एग्जाम दिया था
0: जी।
1: तो नोएडा में तो गया नहीं, करा कि यही नीटे निकाल लेंगे, साल 2 साल 3 साल लगे हम निकाल लेंगे, तो घर से ही पढ़ाई कर रहा था, हम लोग बोले कि भाई चलो लाइब्रेरी थोड़ा सा यूज करो आप, और 300 लमसम लपेट में रैंक लाया था अभी, तो पढ़ाई उसका ठीक है, हम देख रहे हैं अच्छा है।
0: नागेंद्र जी, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े और आपने पढ़ाई कब और क्यों छोड़ दी?
1: पढ़ाई तो अभी हम इंटर तक किए हैं, और घर का थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर था, इसी वजह से हम पढ़ाई छोड़ के बिजनेस में लग गए। देखिए घर का काफ़ी मशक्कत करना पड़ता, मजबूरी में ये करना पड़ा।
0: तो आपको अफसोस नहीं हुआ पढ़ाई छोड़ने का?
1: पढ़ाई का अफसोस तो हर किसी को रहता है, मगर सबको सब चीज़ नसीब नहीं होती, यही बस इसी वजह से थोड़ा सा अफसोस रहता है कि चलो भाई हम नहीं पढ़े, हमारे बच्चे पढ़ तो पढ़ रहे हैं।
0: नागेंद्र जी, आप सब्जी का काम करते हैं, एक सब्जी का दुकान कितने पैसे में शुरू किया जा सकता?
1: सब्जी का कारोबार करने के लिए भी कम से कम 2 से 5 हज़ार के अंदर लग जाएगा, थोड़ा कभी आएगा तो कभी जाएगा ही, सीखने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, जाता भी है कभी आ भी आता भी, ये है कि सीखते सीखते आदमी थोड़ा सा ट्रेंड हो जाता है और फिर अच्छा परिवार भी उसका चलने लगता है। पहले तो अभी सब्जी लेने के लिए, पहले आपको बिजनेस करने के लिए दूसरा है आड़त में जाना पड़ेगा, पहले तो आपको एक ठेला लेना पड़ेगा, फिर तराजू लेना पड़ेगा, चिमकी कैरी बैग जो भी हो देने के लिए, फिर आपको आड़त में जाना पड़ेगा, आड़त में जाने के बाद मोल मोल लाई करना पड़ेगा आपको, अगला 20 बताया अगला 50 बता रहा है, तो आपको मोल मोल ऐसा लें कि सामान जो हो अच्छा भी हो और टिकाऊ भी हो, ग्राहक को दिक्कत भी ना हो, क्योंकि बेचना है ना आपको, इसलिए कम बेसी करके लीजिए और फिर मार्केट में लेके आइए बेचिए। हमारा सोच रहता है कि अच्छा से अच्छा सब्जी ले, चीफ एंड बेस्ट हो, और ग्राहक जिसे खुश भी रहें और आते जाते रहें, न कम दो न बेसी दो, जो भी हो जितना उसका है उतना दीजिए आप। और दूसरा है कि भैया खराब देने से ऐसा होता है ग्राहक का लगाव भी कम होता है, लोग आ भी नहीं पाते हैं, अच्छा दोगे आप तो ग्राहक भी आएंगे, कहीं खोज खोज आएंगे भाई अगला है या नहीं है, था तो अच्छा दे रहा था, इस वजह से हम कहेंगे कि अच्छा ही देना चाहिए, ग्राहक खुश रहे बस।
0: नागेंद्र जी, सब्जी का काम आप कर रहे हैं, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि सब्जी का काम छोड़कर कोई और काम करना चाहिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, चूंकि ये अभी एक बिजनेस ही है?
1: करने का तो मन करता है भैया, मगर क्या किया जाए, 2-4 को आदमी से सुन के कहता है अरे जिंदगी भर सब्जी ही बेचोगे, तो मन करता है कि कपड़ा बेचे चाहे कोई तरह का बिजनेस करें, फिर देखते हैं कि अपना भी पॉकेट मोटा होना पॉकेट में आमदनी हो तभी तो अच्छा लगेगा।

0: मतलब
1: फिर अगले का देखते हैं कि भाई पैसा पूंजी लगाया, 1 रुपया भी नसीब नहीं हो रहा है। दुकान के पगड़ी इतना है, काफी हो गया है कि लोग कर नहीं पा रहे हैं। दुकान नहायत तक ही बंद करना पड़ रहा है, मालिक ही ले रहा है सब। इस वजह से हम सोचे कि चलो भाई सब्जी ही ले देंगे, ठीक है तो गुजारा हो जा रहा है, परिवार का पालन पोषण हो जा रहा है, यही इसी वजह से हम सोचे कि चलो ये ठीक है।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत। इसे हमने लिया है 1983 में रिलीज फिल्म कुली से, जिसका यह गाना काफी लोकप्रिय हुआ था। फिल्म के साथ साथ इस गीत को भी लोगों ने बेहद पसंद किया था। इस गाने को गाया है शब्बीर कुमार ने, बोल है आनंद बख्शी साहब के, और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इकबाल नाम है मेरा। वाह वाह, लगता अल्लाह मियाँ के हुक्म से फरिश्तों ने महीने भर की छुट्टी लेकर बनाया आपको। क्या बात,
1: बदतमीज, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी है।
0: हाँ साहब, ड्रेस तो आपका खराब हो गया लेकिन चेहरा आपका खिल उठा।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म कुली का यह गाना, जिसे गाया था शब्बीर कुमार ने, बोलते आनंद बख्शी साहब के, और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गाने के बाद है, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रम संसार। कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं नागेंद्र कुमार, आइए उनसे करते हैं कुछ और भी बातें। बच्चों के भविष्य को लेकर आप चिंतित होंगे, आगे की क्या योजना है?
1: योजना कोई, हर माँ बाप सोचता है कि भाई ये बच्चे हमसे अच्छा ही हो, मतलब
0: जी।
1: तो हम भी सोचते हैं कि बच्चे भाई हमारे पढ़ ले, हम नहीं पढ़े हैं तो और बच्चे और भी पढ़े, विकास करे भाई। इसलिए हर जिसका जो रुचि है जिसमें वो जाए। एक बच्चा है बोलता है कि इंजीनियर बनेंगे, चलो भाई ऐसा रहा तो इंजीनियर कम बेसी अगर बन ही जाओगे, बनाइए दिया जाएगा पढ़ा लिखा कर। बच्ची भी है तो एक उसका रुचि दूसरा ऐसा इसी में है, हर चीज़ का वो भी अलग अलग रहता है ना, उसमें हम सोचते हैं उसका वो हो जाएगा। नर्स का काम सोच नहीं करेंगे, चलो भाई तुम नर्स बन जाएगा। इसलिए हर कोई का अलग अलग रुचि होता है, जो जो करना चाहे वो करे भाई।
0: अभी तो छोटे होंगे और किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: अभी 1-2 में है, अभी क्या बताया जाए, अभी लंबा, बहुत लंबा है। इस वजह से अभी ये सब बच्चों के ऊपर, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तब तो अच्छा लगता है। ऐसे पढ़ने में बच्चे ठीक है, बच्चे देखने से ही लगते हैं कि पढ़ेंगे। कोई कोई बच्चा होता है कि नहीं बोलता है आदमी कि भाई पढ़ने तो है नहीं रखा, डॉक्टरी कैसे बनोगे तो ये बनोगे, मगर बच्चे तेज हैं तो पढ़ा देना चाहिए, किसी तरह से पढ़ाई ही देना चाहिए। हम भी, हमारा भी सोच यही है
0: जी।
1: कि हम नहीं पढ़े, बच्चों पढ़ लेके भाई देश का नाम रोशन हो चाहे कुछ।
0: नागेंद्र जी, सरकारी विद्यालयों में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है और सरकार बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है, प्रतिभा को प्रोत्साहित भी कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सरकार के प्रति तो पढ़ाई, शिक्षा के प्रति बहुत अच्छा विकास हुआ है। हम लोग तो चाहेंगे कि प्राइवेट से अच्छा तो सरकारी ही पढ़ाई हो रहा है। प्राइवेट पढ़ाई हो रहा है कहाँ, महंगा महंगा किताब आ रहा है, बच्चे इतना लोड डाल दे रहा है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है सर। सरकारी में देख रहे पहले की अपेक्षा पढ़ाई बहुत अच्छा, मतलब विकास भी अच्छा हुआ है
0: जी,
1: पढ़ाई के प्रति बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। तो हम सोचेंगे हर कोई पढ़ाई भी एक बार सरकारी में ही जाए तो उचित होगा, प्राइवेट तो ही है उसके बाद।
0: नागेंद्र जी, हम देखते हैं कि आप रेडियो भी अक्सर सुनते रहते हैं और आप अखबार भी पढ़ते हैं, रेडियो के प्रति जो आपकी रुचि है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: अरे भैया, रेडियो की रुचि तो आज से हमारे बाप दादा पढ़े हैं, फिर मेरे फादर रेडियो यूज किए हैं, अब हम यूज करें। लग रहा है खानदानी जिसे एक तरह कहती है लगाओ हो गया है, रात के 9 बजे जो सुनते हैं, फिर तरह तरह का प्रोग्राम है, टाइम पास हो जाता है, बहुत अच्छा ही है। मतलब टाइम पास करने के लिए रेडियो वाकई अभी भी जस्ट करता है, समय पास करने के लिए बहुत अच्छा है।
0: जो गाना सुनते हैं आप, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: गाना तो वाकई बहुत, जो जो हम लोग बोलते हैं वो गाना, मैसेज करते हैं वो गाना सुनते हैं, गाना के प्रति बहुत अच्छा है। जो जो बोलते हैं मिल ही जाता है, कहीं मिले चाहे ना मार्केट में मिले, विविध धरती पर मिल ही जाता है, इसलिए रेडियो प्रति रुचि अच्छा है हम लोग का।
0: आप जो रेडियो का कार्यक्रम होता है वो कैसे सुनते हैं, मोबाइल से सुनते हैं या रेडियो से ही सुनते हैं?
1: रेडियो से ही सुनते हैं, क्योंकि रेडियो का मजा मोबाइल पर ही नहीं देगा, इसी रेडियो से ही सुनते हैं। अगर खराब हो जाता है मरम्मत भी कराते हैं और रेडियो से ही सुनते हैं। रेडियो का स्वाद कुछ और होता है, सुर में सुर जो आता है रेडियो से ही आता है, मोबाइल में यहाँ ऊपर बोलता है कुछ पता नहीं चलता है।
0: नागेंद्र जी, आप नियमित रूप से रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ, नियम के रूप से ही सुनते हैं। दोपहर में 2 बजे सखी सहेली सब सुनते हैं और रात के जो है रात को सुनते हैं 9 बजे से 10:30 बजे तक सुनते हैं। सासाराम का क्या तारीफ किया जाए, खुद हम सहस्त्र भावों की नगरी में हैं।

मेहदी एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा की आवाज़ में। और अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं लोकमाधुरी कार्यक्रम में राजा पिया जानी एल्बम का एक गीत भरत शर्मा ब्यास की आवाज़ में। माधव पांडे निर्मल हैं गीतकार और संगीतकार खुद भरत शर्मा ब्यास हैं।

इसी के साथ भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोक माधुरी यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार।

हे अम्बा जगदम्बा हे दुर्गा एल्बम का ये टाइटल भजन। अभी आप सुन रहे थे रंजन दुबे और साथियों की आवाज़ों में मृत्युंजय सिंह के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी असलम मिर्जापुर ने। अब आइए रसधार कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएं

पल पल तोहरे ही याद सतावेला एल्बम का एक गीत विनय विराट की आवाज़ है। निकेश मिश्रा हैं गीतकार और संगीतकार हैं सुमित द्विवेदी।

0: आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

किरण पांडे के गए इस गीत के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में लाइव। ये नायाब रिकॉर्डिंग और इससे आगाज रंग तरंग का।

गा मा पा गा मा रे नी नी सा ता नी सा गा मा पा नी सा।

मकता पेश कर रहा हूं, जनाब अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहां तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फर्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फर्क है।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको। मैं हूं तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको।

विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन।

21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

इस कलाम के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि

0: दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राजहट। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की, फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
5: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम रागिनी।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में राम और श्याम फिल्म का गाना। शकील बदायनी थे गीतकार और संगीतकार थे नौशाद। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायनी और नौशाद की जोड़ी का ही लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म का नाम मदर इंडिया।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, फिल्म का नाम फिर वही दिल आया हूँ।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लगाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर का देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, मन करता है इसे गले लगा लें। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकलें बाहर, किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन।

ये है आज की इबारत। और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम दो गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

गुलजार साहब के बोल, गुलमुहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमुहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमुहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें।

इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है, ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं, जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंची नदिया पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हों कि धूप कितनी भी तेज हो आपकी आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक, ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखती है कि यूनुस जी गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, गजब। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़ पहाड़ नदी पंछी सागर फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

ये आशा भोसले की आवाज नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी।

ये गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना, मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहां थी मैं आपको बताता हूं। दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूं। जी हां, बहुत ज्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है, इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें जरूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप जमीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं इसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत सागर किनारा गुलमोहर नदी पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाजा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1:17 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहां तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती हैं कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज़्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता हैं जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने

गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी, ये भी बता सकते हैं आप।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। भाई सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6:00। एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट

एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती हैं कि फ्लैट में रहती हूँ और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है, लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

0: रहा है बेखबर, हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये हवा ये नदी का किनारा।
1: क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाए। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी, और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सूख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोंटाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोंटाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ पांच गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है, जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं?

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुद्र का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था तो अब ये गाना,
1: ओ अपने,
0: इस गायिका का नाम बताइए ये कौन है।

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीर की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

आपको पता है विविध भारती का जो कंपाउंड है वहां सबसे ज्यादा आते हैं पैराकीट्स यानी तोते। आपके इलाके में कौन से पंछी ज्यादा नजर आते हैं?

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिनी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है दो नदियों के बीच बसा है, महानदी, और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल

का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि इन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहती हैं मैं अपने पति से, एक श्रोता हैं जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

0: साथ सुनो।
1: कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही है कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं। और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

0: दोस्तों ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है, जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के साथ।
1: तो आइए सुनते हैं दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखें, जल्द TRE4 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विधि सम्मत होगी। पटना में TRE4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी तत्वों के उकसावे में आकर अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन न करें। इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समीप प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जुलूस निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। जानकारी के अनुसार शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के लिए देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में भेजा जाएगा। सुश्री सिंह ने पटना में विभागीय बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार और बुधवार को बैठक होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज बुलाई हड़ताल का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने हड़ताल का समर्थन किया है। ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदेश में भी अधिकांश स्थानों पर दवा दुकानें आज बंद रखी गई हैं। हालांकि इस दौरान सभी प्रमुख फार्मेसी श्रृंखलाएं, अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल

0: भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना के तहत इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवों में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह आयोजन 25 मई तक चलेगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकांश स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर आज आंधी, पानी और वज्रपात की आशंका जताई है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एसएसबी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें 227 जवानों ने दीक्षांत प्राप्त किया। इस अवसर पर आईजी ट्रेनिंग अनुसुईया रण सिंह साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। अररिया जिले के जोगबनी स्थित भारत नेपाल सीमा चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल अंतर्गत मकराइन, डालमिया नगर और अकोढ़ी गोला क्षेत्र से पुलिस ने अवैध बालू खनन से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम नीलेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दी जाएगी। पटना में सहाफियों से बातचीत करते हुए जनाब तिवारी ने कहा कि असातजा उम्मीदवार सब्र तहमुल से काम लें और भरोसा रखें, जल्द TRE4 इम्तहान का शेड्यूल जारी होगा। उन्होंने कहा कि असातजा बहाली का अमल कानून के मुताबिक ही होगा। पटना में TRE4 के मुजाहरे के पेश नज़र वजीर तालीम ने कहा कि बाहरी अनासिर की इश्ताल अंगेजी में आकर उम्मीदवार गैर जरूरी तौर पर एहतजाजी मुजाहरा न करें। इससे कबल असातजा उम्मीदवारों ने आज पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के करीब मुजाहरा किया। मुजाहरा जुलूस निकालने के दौरान मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में आज रियासती काबीना की मीटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक शाम 5:30 बजे काबीना सेक्रेटेरिएट में मीटिंग की जाएगी। मीटिंग में कई अहम तजावीज पास किए जाने का इम्कान है। वजीर खेल शरेसी सिंह ने कहा कि रियासत के बासलाहियत खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग के लिए मुल्क के नामवर ट्रेनिंग इदारों और अकेडमियों में भेजा जाएगा। पटना में मुनक्किद महकमा जाति जायजा मीटिंग के दौरान अफसरान को इससे मुतल्लिक जरूरी इकदामात करने का हुक्म दिया। वजीर खेल ने कहा कि महकमा जाति कामों के बाजाब्ता जायजे के लिए हर सोमवार और बुध को मीटिंग होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं बोर्ड इम्तहान 2026 का इवेल्यूशन जवाबी कापियों की स्कैन की गई कापियों के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख एक दिन मजीद बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की अपील पर आज तलब की गई हड़ताल का असर रियासत में भी नजर आ रहा है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यूनियन ने भी हड़ताल की हिमायत की है। दवा दुकानदार ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवाओं की फरोख्त के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। इसकी वजह कर रियासत में भी बेशतर मकामात पर दवा दुकानें आज बंद हैं। हालांकि इस दौरान सभी अहम फार्मेसी सीरीज, अस्पताल पर मबनी मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। मरकजी हुकूमत की कबायली वजारत की जानिब से रियासत के कबायली अक्सरियत वाले गांव में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का

0: बात किया जा रहा है। मरकजी दर्ज फहरिस्त व कबाइल फलाह महकमा के इस मंसूबे के तहत इन गांवों में कैंप लगाकर मुख्तलिफ फलाही मंसूबों के मुस्तफिदीन से दरख्वास्तें ली जा रही हैं और उन्हें सरकारी सहूलतों का फायदा पहुंचाया जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में निशान जद कबायली अक्सरियत वाले गांव में आज भी कैंप के तवसुस से मरकज और रियासती हुकूमतों के मुख्तलिफ फलाही मंसूबों के बारे में लोगों को मालूम फराहम कराई जा रही हैं। यह इनका 25 मई तक चलेगा। रियासत के बेशतर खित्तों में जबरदस्त गर्मी की सूरत हाल बदस्तूर कायम है। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और भोजपुर समेत रियासत के जुनूब मगरबी इलाकों में बेशतर मकामात पर दर्जे हरारत 42 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिले में लू चलने के अंदेशे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42.60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत के साथ कैमूर जिले का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। इधर महकमा ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत रियासत के शुमाल मशरक इलाकों में कई मकामात पर आज आंधी पानी और बर्फबारी का अंदेशा जाहिर किया है। मगरबी चंपारण जिले के बगहा में SSB की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। इसमें 227 जवानों ने कॉन्वोकेशन हासिल किया। इस मौके पर IG ट्रेनिंग अनुसुईया रन सिंह साहू मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहीं। अररिया जिले के जोगबनी वाके भारत नेपाल सरहद चेक पोस्ट पर गाड़ी जांच के दौरान पुलिस ने एक मुसाफिर बस से कसीर मकदार में नशा आवर दवाएं बरामद की हैं। इस मामले में दो स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास जिला के डेहरी सब डिवीजन के तहत मकराइन, डालमिया नगर और अकोढ़ी गोला इलाके से पुलिस ने गैरकानूनी बालू खुदाई से मुंसलिक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। SDM नीलेश कुमार की क्यादत में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC अधिनायक अनुदेशक हवलदार इंस्ट्रक्टर के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 की आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु

विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ रोजगार सूचना समाप्त हुआ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम सुनते हैं दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान

0: निर्देशित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर

0: बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा
3: और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
4: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।

0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार हैं एसएच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से, इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारे याद सताते हैं,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
0: अरे वाह।
1: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, जब भी चेहरे की चमक बता रही है
1: बिल्कुल,
0: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
1: बिल्कुल,
0: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
1: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
0: अच्छा।
1: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, उस तब जाओ वहां तक पहुंचो आप। एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध, तो

0: इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहां पे, तो
1: अच्छा
0: बस आप रोपवे तक पहुंचिए अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से किसी से चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का, अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो,
1: अरे वाह,
0: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा,
0: हाँ तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है ना।
0: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को जो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल
0: इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है, तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप
1: हाँ
0: पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
1: वो अच्छी
0: हमने भी
1: बात है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: जी
1: ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए।
0: बिल्कुल
1: और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो
0: बहुत
1: तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद भी कहा, तो
0: जी
1: तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी तुम,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है
0: बहुत अच्छा
1: ना,
0: लगता है,
1: और
0: ब्रेक कम ले आते हैं।
1: आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा
0: बिल्कुल
1: यात्रा को
0: बहुत
1: करने के बाद, इतनी जगह घूम के
0: जी,
1: आई हो
0: इतने लोगों
1: तो।
0: को देखा, सब कुछ
1: हाँ,
0: किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखी बहुत अच्छा
1: नई
0: लगा
1: संस्कृतियों का अनुभव
0: बहुत
1: होता है हमें, नए
0: जी।
1: अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
0: तरह तरह
1: हैं।
0: के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते
1: अरे क्या बात
0: हैं, जो
1: है।
0: मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहां बनेगी,
1: उसमें
0: लेकिन
1: फर्क होता है
0: स्वाद
1: स्वाद
0: बिल्कुल फर्क
1: का।
0: होता है
1: हाँ, क्योंकि पानी का बनाने वाले का
0: जी।
1: तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं
0: हाँ
1: बदलता है ना।
0: बिल्कुल बहुत
1: तो
0: अच्छा लगता
1: यात्रा
0: है,
1: करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा
0: बहुत
1: मानती
0: सुकून
1: हूँ,
0: मिला।
1: और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है तो आप फील गुड महसूस कर रही
0: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं
1: हैं।
0: अपने अंदर
1: तो
0: तो
1: चलिए, सखी
0: जी।
1: सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है।
0: जी
1: तो अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो, देखिए आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: पर काटती बहुत बुरा है।
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजें, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: सद्भावना, अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें,
0: हाँ,
1: जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा और हमें खिलाएंगी भी, ठीक है। तो भाई हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती हुई नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
1: अरे भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस और मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे।

0: मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वैगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है। और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
1: बताइए तब जाके हमें हाँ शुद्ध जो शहद है वो मिलता है
0: एक
1: ना?
0: बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियाँ उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियाँ जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने लिखा कि पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
0: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था।
0: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पराग कणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को, उनके महत्व पर जोर देना भी था।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागणकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए।
1: हाँ।
0: बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक
1: वो काटी करेगी। बिल्कुल,
0: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं, अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो, अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिये तरीके से इस चीज को लिखा है।
1: बिल्कुल सही कहा है।
0: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर

0: पाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है, और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का।
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में,
1: जी
0: हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और
1: जी
0: उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार,
1: अरे बहुत
0: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियां, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे
1: जी।
0: में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ तीन होता है, और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने
1: अच्छा
0: लगा
1: जी। तो उनके
0: है।
1: शिक्षक का नाम और उनका जो
0: नाम,

0: जो भाई
1: लड़के।
0: थे उनके।
1: हाँ देखिए,
0: हाँ, और बंबई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा, और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया, और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है, और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है, बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये
0: जी,
1: तकनीक,
0: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
1: बहुत
0: भी।
1: मुश्किल है।
0: तो इसमें एक या दो ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई, जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं, और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके
0: जी
1: अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का, या दो रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
0: जी और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है, और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल, अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है, तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं, और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तांचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई
0: जी
1: साड़ियों में,
0: जी
1: और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं।
0: जी
1: और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं, या विवाह समारोह के अवसर हैं, या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में, और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है, और
0: बिल्कुल
1: उन्होंने इसे कब और कहाँ पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी
0: जी
1: पत्नी ने तंचोई
0: उन्होंने
1: साड़ी
0: दिलाई है
1: खरीदने
0: कि
1: के लिए
0: नहीं।
1: कितना दिमाग खराब किया होगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना।
0: बताइए
1: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है
0: जी।
1: हमारी सखियों और सखाओं का,
0: हाँ,
1: तो हमसे
0: तब तक
1: शामिल करें,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल, तब तक हम
1: हम
0: गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दी
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है।

0: यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमेरिका में रहने वाला हो चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं।
1: बहुत गहरी बात है आरती ये, अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझते समझ आता है ना जिस तरीके से जिस भाषा को जानते हैं,
1: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी मत मन में लेकर
1: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
0: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है, यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
1: है। क्या
0: बात
1: है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है, डिग्रियां लेते हैं आप, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
0: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
1: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती, प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती है,
0: सबका नजरिया
1: मायने रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है, और एक से अधिक भाषाएं ना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
0: बिल्कुल। वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा में,
1: कितना अच्छा लगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं,
1: तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
0: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना।

0: लेकिन शौक रखना चाहिए,
1: अपने मन से सीखिए। हाँ। आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितनी अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा बोल लेते हैं,
0: चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है, देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा
1: हाँ,
0: बोल
1: हम
0: लेते
1: चौंक
0: हैं
1: जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और
0: बिल्कुल,
1: बढ़ जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बढ़ जाता
1: देखने
0: है
1: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है
0: जी,
1: जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो
0: बिल्कुल
1: भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और
0: जी
1: इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ,
0: जी
1: कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है,
0: जी
1: लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती है।
0: बिल्कुल
1: तो एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

के घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पर एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख कर भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया। इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया, और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ,
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के आप पर
1: उछल
0: आएगा।
1: कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं। अगर आपने इनको छेड़ दिया,
0: बिल्कुल
1: ऐसी ततैया भी बहुत बुरा काटता है, पीले रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं, उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार

0: विचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
0: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
1: बहुत बड़ी भाषा
0: है, सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है, और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी हम कह रहे हैं श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
0: बिल्कुल,
1: वो जो उनके अंदर चीजें है ना, वो विचार सामने आते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं, और यह न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: बिल्कुल। और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा है,
0: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो, अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: चलिए, आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं।
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना।
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो। जी
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना, इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और ये श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ, आरती ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
0: क्या
1: अर्थ
0: है?
1: है।
0: हाँ, वो
1: हाँ
0: क्या है?
1: जी
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना, अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेम पूर्ण व्यवहार। और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका,
1: बिल्कुल
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है।
1: जी

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल।
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तेल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़ पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको, गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है, और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं। एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है इसका, मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पर मिली जाएगी,
0: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
1: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद

0: अब यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
1: नहीं, जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी,
1: अल्मोड़ा हुआ,
0: अरे गजब, पहाड़ों
1: पहाड़ों पर।
0: पर।
1: और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यू नहीं, मतलब
0: जी
1: मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त, तब तक
0: अच्छा
1: शुरू नहीं हुआ था। तो जो
0: जी
1: शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह कर इतना आदी था, और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से
0: जी
1: था,
0: जी जी
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब,
0: हाँ
1: और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब। तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था
0: जी
1: वो एक अलग अनुभव था। तो
0: जी
1: एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है, और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
0: हाँ
1: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
0: हाँ
1: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब
0: बहुत
1: घूमने जाओ
0: मुश्किल
1: तो अलग बात है,
0: जी।
1: लेकिन आपको रहना हो, और जो कभी रहा ना हो, कभी
0: हाँ
1: रहा ना हो,
0: हाँ हाँ
1: तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था, लेकिन वो गुजरा। और मैं 1.5 साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया, हाँ,
0: अच्छा,
1: 86 में।
0: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
1: और
0: वो
1: वो भी
0: सब।
1: सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अग्गे जी वहां पे
0: हाँ
1: रहे, और रविशंकर जी का वहां पे वो था, है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: यस,
1: ये सब
0: उदय
1: भी,
0: शंकर जी का
1: उदय
0: था
1: शंकर, सॉरी, उदय
0: जी
1: शंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब, कि
0: जी
1: ये सब। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे रह
0: रहते
1: गए।
0: कैसे?
1: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, कि
0: जी
1: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
0: वो
1: पहाड़ों में
0: पहाड़ों
1: कैसे।
0: में। बिल्कुल,
1: तो ये था।
0: मुंबई 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे, क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये सपनों की नगरी थी,
0: जी
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए आए थे, तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है, और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक
0: जी।
1: अलग ही दुनिया थी, लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है
0: हाँ
1: उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम,
0: बिल्कुल,
1: है
0: और तब तो लंबी लाइनें
1: ना। हाँ,
0: हुआ
1: वो
0: करती
1: लंबी
0: थी।
1: लाइनें हुआ करती थी, तो जीजस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटॉपिल से किंग सर्कल आना, वहाँ से पैदल,
0: जी
1: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस सब शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
0: हाँ,
1: में।
0: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
1: हाँ,
0: ढाल लेता
1: तो फिर
0: है
1: वो लोग अपने आप आपको उतार देते
0: जी।
1: हैं। तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
0: जी,
1: उतार देंगे लोग,
0: लोग उतार
1: तो ये
0: देंगे
1: उतार, तो
0: जी।
1: ये।
0: तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
1: यहां जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
0: चरम
1: पर
0: पर
1: थी,
0: थी
1: चरम
0: जी
1: पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
0: जी
1: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में, मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त ये
0: बजाया करते थे
1: बजाया
0: उसको
1: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर, नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो, और
0: बिल्कुल।
1: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
0: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है, क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं, कि भूपिंदर सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
1: बहुत प्यार है,
0: बल्कि
1: बहुत
0: हमने
1: प्यार।
0: उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
1: जी,
0: तब
1: सही
0: मैं था
1: सही
0: नहीं
1: सही।
0: शहर में।
1: हाँ, तो भूपी जी

0: मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज़, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जब अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या
0: हाँ
1: बात
0: ना,
1: है,
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: पेडर रोड
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया। और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह, उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था। जब बम्बई में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे।
1: जी
0: हाँ, वो उनका मिल जाना, फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह
0: वरना
1: वाह
0: अक्सर होता
1: वाह
0: है कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे,
0: नहीं, ये जो जिंदगी की
1: ये
0: किताब
1: जो
0: है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह
0: हाँ,
1: वाह वाह
0: तो ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे एक हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ, तो
1: हाँ
0: मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
1: जी
0: वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
1: अच्छा।
0: वो गजल शराब पड़ती तो वो
1: गजब।
0: गजल, लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और
1: जी जी जी
0: चलिए।
1: ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, तो
1: वही
0: उसको
1: अब
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ। एक
1: जरूर जरूर।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस

0: गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
1: बिल्कुल
0: और उसमें जो
1: बिल्कुल
0: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
0: जी
1: रिंगटोन में भी ये गजल
0: जी जी
1: बजती
0: जी
1: है।
0: जी
1: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
0: पंकज जी, उसके बाद
1: जी।
0: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की, सब
1: नबील
0: जगह।
1: था,
0: हाँ,
1: नबील था
0: नबील, नबील,
1: जी।
0: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
1: जी
0: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। हाँ,
1: आरोही
0: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
1: जी।
0: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
1: अरे
0: नीचे
1: बाप रे,
0: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
1: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
0: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
1: अच्छा है, ओके।
0: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
1: आरोही
0: इन दोनों
1: में
0: के साथ
1: गाया
0: रहा। तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
1: आपके अपने दोस्त ने
0: हाँ,
1: ये बात
0: ये मेरे
1: कही
0: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
1: जी
0: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
1: जी जी
0: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
1: ओहो
0: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
1: जी
0: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
1: हाँ,
0: सीरियल
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बड़ा नाम है अजय
0: हाँ,
1: कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था। अच्छा,
1: जी
0: दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
1: जी
0: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना, फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
1: हाँ बिल्कुल
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया, या कुछ मिसरा गलत हो गया, या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए, मजरू साहब उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये। तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
1: जी।
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: मजरू
1: मजरूह जैसे
0: सुल्तानपुरी साहब का
1: बड़े
0: आशीर्वाद था,
1: शायर की बात
0: है
1: है
0: ना।
1: ये,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है। पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
0: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर तो शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे
0: बिल्कुल
1: पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है।
0: जी
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल, बहुत ही मशहूर।
1: मशहूर।
0: जी
1: आज तो वो दौर नहीं है,
0: जी
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी,
0: जी
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: कैफी आजमी, मुमताज राशिद, और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
0: जी
1: बशीर
0: जी
1: बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर
0: सदर,
1: रहे थे,
0: जी
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे, सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे
1: अजित एक्टर,
0: जी,
1: और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर
0: अलग ही
1: के
0: होता था।
1: अलग ही हुआ करता था,
0: जी
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा। तो निरा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे
1: तो
0: बाप रे,
1: शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुला कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है ना,
0: जी
1: भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ,
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया,
0: अरे अब
1: मतलब ये,
0: तो शुरुआत कर रहे थे जबकि।
1: हाँ
0: जी
1: मुशायरा तो हो गया,
0: अरे
1: मतलब
0: बाप रे,
1: ये,
0: बहुत बड़ी बात
1: हाँ
0: है।
1: तो ये बड़ी बात थी। तो
0: जी
1: ये जो मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
0: जी
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया अपने
0: गजब
1: घर पर, फिर
0: जी,
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन रहा, जो बता रहा हूँ जिसके बारे में,
0: जी
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
0: हाँ
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
0: हाँ
1: आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
0: चले
1: दुनिया
0: गए।
1: में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: चले गए,
0: जी
1: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ। चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे, नहीं करेंगे।
0: जी
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूं कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे।
0: बिल्कुल
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई, और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ। तो मैं
0: बिल्कुल
1: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
0: जी,
1: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब, ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गज़ल गाई, दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गज़ल गाई, और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई, ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
0: रिबन
1: वो कर दिया,
0: खोला।
1: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया, और तालियां वालियाँ सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा।
0: जी
1: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया, तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
0: हाँ
1: पूरा,
0: बाकायदा, और पूरा
1: हाँ
0: हॉल
1: पूरा
0: भरा हुआ
1: हॉल
0: है।
1: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
0: अरे
1: स्टैंडिंग
0: बाप रे,
1: माइक दीजिए, हाँ। तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि, तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
0: अरे बाप रे,
1: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
0: जी
1: उनको
0: जी
1: पसंद थी गजल, तो सारे, तो वो गजल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस पर

0: हिंदी में जानवर की हो
1: जी
0: ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार, ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे
0: हाँ जान।

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: बाबा
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस
1: क्या बात है,
0: आसमान
1: बाकी है।
0: बाकी है। जाने कितनी उड़ान बाकी है। रुजल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके मुंह में
1: जबान बाकी है।
0: जुबान बाकी है। जाने कितनी उड़ान बाकी
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार
0: है।
1: शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले,
0: उनकी
1: उनकी
0: यादों
1: यादों
0: के
1: के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
0: सखी
1: सहेली आपके
0: सहेली।
1: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
1: जी
0: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल,
0: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी जी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
1: सब
0: से।
1: चीजों को
0: हाँ,
1: संभालते
0: सबको सब संभालते थे। तो
1: थे
0: एक अच्छी टीम थी जो
1: जी,
0: हर तरह से, जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
1: बिल्कुल
0: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
1: जी,
0: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
1: बिल्कुल। और हर
0: ऐसा कम
1: रोज आप
0: होता
1: एक
0: है,
1: नई चुनौती
0: ऐसा
1: सामने
0: कम
1: रखते
0: होता
1: थे
0: है।
1: जी।
0: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है जिसके
1: नौशाद
0: साथ
1: साहब आ रहे,
0: कहीं,
1: खयाम साहब आ
0: हाँ,
1: रहे
0: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए,
1: जी,
0: आनंद जी आए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो
1: बिल्कुल,
0: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
1: रवि जी
0: ना,
1: आए,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: खयाम साहब,
1: खयाम साहब आए, और
0: हाँ
1: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
0: हाँ तो बड़े
1: हाँ
0: बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: मुझे याद है कि
0: हमारे
1: खयाम
0: मेहमान,
1: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
0: हाँ
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए
0: हाँ
1: हैं, और वहीं 1 घंटे बात हो रही
0: हाँ उनको
1: है।
0: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत वो था, वो
1: जी
0: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का,
1: बिल्कुल
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे।

0: तक बातें करते थे, कैफी आजमी साहब। तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया। उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
1: ज्यादा
0: उनके
1: कर
0: ले
1: सकते
0: सकते हैं
1: थे
0: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं। ये लोग
1: जी,
0: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
1: बिल्कुल
0: में? तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
1: किसी
0: है,
1: के पास नहीं
0: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है,
1: जी।
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। या
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी
0: ना, आपका फेवरेट क्या है, वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम जो
1: बढ़ के
0: है
1: एक हैं
0: वो हुए। प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है
0: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ, और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो

0: उनकी यात्रा
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम जो
1: बढ़ के
0: है
1: एक हैं।
0: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है
0: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी
0: हाँ
1: मैं बात
0: हाँ
1: करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट
0: ना
1: का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन
0: हाँ।
1: देना
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
1: जी
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
1: जी
0: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
1: बिल्कुल
0: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
1: जी
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद
1: बिल्कुल।
0: आया।
1: विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था। दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को। तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूं।

0: एक जरूरी बात रह गई है, और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो इस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं, है
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है, मदर इन लॉ जो है, वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं, क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
0: हाँ
1: कि हम, मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: उम्मीद ही
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने, वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
0: हाँ
1: तो मुझे यहाँ से ले जाओ,
0: अरे बाप रे,
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो
0: हाँ।
1: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
0: गजब।
1: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
0: हाँ
1: हाँ हाँ आइए बैठिए चाय।

0: पी सब कुछ किया। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
1: हाँ
0: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे
1: हाँ
0: उसको पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा
0: ये
1: है।
0: नहीं होने देंगे,
1: हाँ
0: मैं भी चलूंगी,
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी। तो
1: बाप रे।
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी जी
0: जब
1: जी
0: उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: तो मैंने
1: ये
0: कहा हाँ। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ
0: सारा साहस इनका है
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा
1: जिंदगा,
0: क्यों नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के कितने
1: कितने हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर।
1: इरशाद,
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह,
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर
0: कोरे
1: गिरा,
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: एक
1: बात है,
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
1: गम छुपाना,
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: गम
1: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या
0: छुपाना
1: बात है
0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात
0: शुक्रिया।
1: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं और अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: डिफिकल्ट
0: लाइन
1: होता
0: को।
1: है ये,
0: हाँ, लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी,
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई,
1: वाह
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूं।
1: इरशाद इरशाद।

0: को समेटते हैं यहां से
1: क्या बात है,
0: वहां से
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हम।

0: करूं। और ये शेर में जो खास सुनाना चाह रहा हूं,
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब।
1: जी,
0: एक होता है शराब और
1: और
0: एक
1: ये
0: होता
1: होता है
0: सराब, जिसे
1: सराब।
0: मृग मरीची का मिराज
1: जी
0: जिसे उर्दू इंग्लिश में
1: यस,
0: बोलते हैं कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है, दिखता है, होता नहीं
1: होता नहीं,
0: है ना मरुस्थल में।
1: आग का धोखा है।
0: हाँ, पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताएं टूटे हैं

0: से हम अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास।
1: वाह वाह, अब तो शराब
0: अब
1: से
0: तो
1: ही।

0: कहाँ से हम।
1: क्या बात है,
0: थैंक
1: क्या बात
0: यू
1: है।
0: थैंक यू।
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आज के मेहमान

0: उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती, इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
1: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत के पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएमएन के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे देते हैं।

अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर आप सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे सखियों का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी पर्यावरण संतुलन में मधुमक्खियों का स्थान वर्ल्ड बी डे पर, और योजना में शक्ति ऋण योजना के बारे में जानकारी मिलेगी। ब्यूटी टिप्स भी होंगे, गीत संगीत भी होगा इस कार्यक्रम में, और आज इस कार्यक्रम में सूत्रधार होंगी विनीता सिंह। शाम 6:00 भोजपुरी लोकगीत आप सुनिएगा, और शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी बुलेटिन आपको सुनवाए जाएंगे। शाम 6:10 पर आप सुनिएगा ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम गांव घर। इसमें चर्चा होगी मधुमक्खी के प्रकार और उनके लाभ और हानियों के बारे में विश्व मधुमक्खी दिवस पर। लोकगीत भी आप इसमें सुनेंगे आरती माला से, और वार्ता सुनिएगा वृक्षों का हमारे जीवन में महत्व, वार्ताकार भूपेंद्र नारायण सिंह से। एक जानकारी में सुमित्रा नंदन पंत जयंती और समर सेबुल का अनुचित उपयोग न करें इस पर भी जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम में आज की सूत्रधार है कुमकुम। शाम 6:40 पर सांझगीत में भोजपुरी फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा, और शाम 7:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास, और शाम 7:25 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए।

शाम 7:50 पर हमारे श्रोता सुनेंगे फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो मनपसंद। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, जो हमारे केंद्र से रिले होगा।

रात्रि 9 बजे शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम सुनिएगा सुर सौरभ, और इसमें आज आप सुनेंगे सितार वादन शाहिद परवेज से, तबला संगत होगा विजय घाटे से, और राग झिंझोटी में आप सुनेंगे ये सितार वादन।

रात्रि 9:30 पर विविध भारती से सुनिएगा आज के फनकार कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे रसरंग।

रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोता, इसी के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, शाम के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सखियों का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन।

सभी सखियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और सखियों के प्रिय कार्यक्रम घर आंगन में हम सभी सुनने वाली सखियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सखियों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी विनीता सिंह। आज आपके इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करने के लिए सखियों संग फिर से हाजिर हुई हूं। सखियों का प्रिय कार्यक्रम घर आंगन लेकर, तो हमारी सभी प्यारी प्यारी सखियाँ तैयार हो जाइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सखियों, पता है शहद अमृत है, ये सब हम भली भांति जानते हैं। और प्राकृतिक शहद यानी जो नेचुरल शहद जो मधुमक्खियाँ बनाती हैं, मधुमक्खियों के छत्तों से काट कर निकाला जाता है, वो शहद तो हमारे लिए औषधि का काम करती है, दवा का काम करती है। शुद्ध शहद हमारी सेहत के लिए वरदान है। इसके रोज़ाना सेवन से हमें स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे मिलते हैं। चाहे हम सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी में शहद डालकर पिएं, या मिठास के लिए किसी भी चीज़ में, खाने पीने वाली किसी भी चीज़ में डालकर प्रयोग करें, तो मीठा मीठा कितना अच्छा लगता है खाना। और चीनी के जगह पर शहद का प्रयोग ज़्यादा लाभकारी होता है। जो शहद में बात होती है वो चीनी में क्या बात होती है। शहद पोषण से भरपूर होता है, इसीलिए इसे हेल्दी माना जाता है। सखियों, शहद जिसको मधु भी कहा जाता है, ये मधुमक्खियों के कारण हमें मिलता है शुद्ध शहद। मधुमक्खियां तरह तरह के फूलों, पत्तियों, पंखुड़ियों, पेड़ पौधों पर बैठकर उनसे रस निकालकर अपने छत्ते में डालती रहती हैं, यानी मधुमक्खियां मधु बनाती रहती हैं। ये शहद बनाने का मधुमक्खियों का प्रोसेस एकदम नेचुरल होता है, काफ़ी लंबा होता है, महीनों लग जाते हैं मधुमक्खियों को शहद बनाने में। और अब तो बहुत सारे लोग मधुमक्खी पालन भी करने लगे हैं। और सखियों, जो शहद हमारे लिए बहुत गुणकारी है, हम सब बड़े चाव से खाते हैं, वो शहद तो आपको पता ही है कि हमें कैसे मिलता है। हमारे लिए वो शहद कौन बनाता है? वो शहद बनाती हैं मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ सिर्फ हमारे लिए मीठा मीठा गुणकारी शहद ही नहीं बनाती हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण का साथ साथ में संतुलन भी बनाने में योगदान देती हैं, यानी पर्यावरण की रक्षक भी हैं मधुमक्खियाँ। जितने भी परागकर्ता जीव हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, ये सब हमारे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। चाहे वो मधुमक्खियाँ हों या तितलियाँ हों या चमगादड़ या हमिंग बर्ड या परागकर्ता कीट, पतंगे और पक्षियाँ, ये सब पर्यावरण के बैलेंस को बनाने में काफ़ी अपना योगदान देते हैं। सखियों, हजारों वर्षों से हम सब मधुमक्खियों से शहद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। शहद इकट्ठा करने से लेकर मधुमक्खी पालन तक मधुमक्खी और मनुष्यों के बीच में, यानी हमारे बीच में एक संबंध रहा है। और आज के समय में किस तरह पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के द्वारा मधुमक्खी पालन हो रहा है, जो एक व्यवसाय या आजीविका का साधन भी है। सखियों, मधुमक्खियों के ऊपर या उनसे हमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस पे हम आगे भी कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं ये गाना।

0: आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: सखियों, इस संदेश से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कार्यक्रम में मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खियाँ किस तरह हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायी हैं, इस पर हम बात कर रहे थे आपसे। और सखियों, सदियों से मधुमक्खियाँ जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों यानी कीटों में गिनी जाती हैं, मनुष्य और पौधों और पर्यावरण को लाभ पहुँचाती रही हैं। यानी पर्यावरण संतुलन में मधुमक्खियों का बहुत विशेष योगदान है। मधुमक्खियाँ परागणकारी जीव हैं। इनका काम मुख्य रूप से पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाकर, यानी मधुमक्खियाँ और अन्य परागण जो जीव होते हैं, अन्य परागणकर्ता न केवल फल, मेवे, बीज पैदा करते हैं, बल्कि उनकी विविधता और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं।

तरह हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायी हैं, इस पर हम बात कर रहे थे आपसे। और सखियों, सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों यानी कीटों में गिनी जाती हैं, मनुष्य और पौधों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाती रही हैं। यानी पर्यावरण संतुलन में मधुमक्खियों का बहुत विशेष योगदान है। मधुमक्खियाँ परागणकारी जीव हैं। इनका काम मुख्य रूप से पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाकर, यानी मधुमक्खियाँ और अन्य परागण जो जीव होते हैं, अन्य परागणकर्ता न केवल फल, मेवे, बीज पैदा करते हैं, बल्कि उनकी विविधता और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं। सखियाँ, आप पहाड़ों पर गई होंगी, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर आपने तरह तरह के औषधीय पेड़ों को देखा होगा। आखिर उन पहाड़ों पर कौन पेड़ लगाता है? यही हमारे परागणकारी जो जीव हैं, कीट हैं, यही अपने पराग से ले जाके बीजों को गिराते हैं, जिससे कि फल, मेवे वाले वृक्ष या बहुत सारे औषधीय वृक्ष अपने आप उगाते हैं। और विश्व भर में मानव उपयोग के लिए फल या बीज पैदा करने वाली 4 में से 3 फसलें कम से कम आंशिक रूप से परागणकारी जीवों पर निर्भर हैं। मधुमक्खियां और अन्य परागणकारी जीव जैसे तितलियां, चमगादड़ और हमिंगबर्ड और हमारे अन्य परागणकारी जीव जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्रों के अस्तित्व के लिए एक मूलभूत प्रक्रिया हैं, यानी कि बहुत ज़रूरी हैं। ये परागणकारी जीव न केवल खाद्य सुरक्षा में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सखियों, आज मधुमक्खियों, परागण करने वाले कीटों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, यानी ये कम होती जा रही हैं। इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसी महत्व को समझाने के लिए ही हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, जो कि आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हर साल मधुमक्खी दिवस मनाकर हम मधुमक्खियों और अन्य परागणकारी जो जीव हैं, उनकी विशेषता, उनके महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जो लोगों को और पृथ्वी को स्वस्थ रखने में, जो हमारी पृथ्वी है उसको स्वस्थ रखने में निभाती है। ये दिन हम सभी के लिए एक अवसर भी प्रदान करता है कि परागण करने वाले कीटों और उनके आवासों की रक्षा और संवर्धन करने, उनकी संख्या और विविधता में सुधार करने और मधुमक्खी पालन में सतत विकास का समर्थन करने वाले कार्यों को बढ़ावा देने के लिए है। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने से हमें पता चलता है कि मधुमक्खियाँ किस तरह मनुष्य और हमारे लिए मिलकर, हमारे साथ मिलकर लोगों को और पर्यावरण का पोषण और संरक्षण करती हैं। तो सखियाँ, मधुमक्खियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, और बहुत जगह मधुमक्खियों का जो मधुमक्खी पालन होने लगा है और इनकी रक्षा हो, इनकी वृद्धि हो, इसके लिए हर साल मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। और अभी हम फिर से सुनते हैं एक गीत।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके?
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो

0: टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
1: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: सखियों, गर्मियों के मौसम में चलने वाली तेज और गर्म हवा, जिसे हम लू या हीट वेव कहते हैं, सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है हमारे लिए। इससे बचने और ख़ुद को सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ आसान और असरदार उपाय कर सकते हैं। पहला, हाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी ना होने दें। खूब पानी पिएं, प्यास ना लगने पर भी दिन भर थोड़े थोड़े पानी पीते रहें जब भी समय मिले। और जब घर से बाहर निकलें, यानी घर से बाहर निकलते वक्त पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। देसी ड्रिंक्स का सेवन करें, आम पन्ना। देसी ड्रिंक्स क्या है सखियों हमारे लिए? आम का पन्ना, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी और पुदीने का रस लें। पुदीने का रस लू से बचाने में रामबाण का काम करता है। ये शरीर के नमी को बरकरार रखता है, बनाए रखने के लिए है। और खाली पेट बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने से पहले कुछ हल्का खा लें और पानी पीकर ही निकलें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सखियाँ, कपड़े। जब हम बाहर निकलते हैं तो कपड़े पहनने में सावधानी बरतें, यानी कि सूती या कॉटन के कपड़े हमेशा पहने, ढीले कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने और कॉटन के कपड़े पहने, ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और पसीना आसानी से सूख सके। गर्मियों में काला कपड़ा पहनने से बचें, क्योंकि ये सूरज की सभी किरणों को और ऊष्मा को, जो गर्मी होती है उसको अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है। इसके कारण शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ता है और आपको पसीना आता है और आपको भारी बेचैनी और गर्मी महसूस होती है। कोशिश करें कि गर्मियों में हमेशा सफ़ेद कपड़ा या हल्के रंग के कपड़े पहने, ये ठंडा रखता है हमारे शरीर को। सर और चेहरे को ढकें। दोपहर में बाहर निकलते वक्त सर को कपड़े, टोपी, पगड़ी, गमछा, तौलिया, जो कुछ भी आपको पसंद है या आपको सूट करता है, उससे ढकें और छाते से ज़रूर अब ढक करके चलें। चश्मा और सनस्क्रीन लगाएं। आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस, यानी धूप का चश्मा पहनें और स्किन पर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सखियाँ, कि खान पान में बदलाव। पानी से भरपूर फल खाएं। अपनी डाइट में तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसे रसीले फल को शामिल करें, क्योंकि ये सभी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे, इसलिए आपको इनके सेवन से गर्मी से राहत मिलेगी। चाय स्लेश कॉफ़ी कम करें। चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कम से कम करें या बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनमें कैफीन होता है, जो शरीर में पानी की कम से कम की कमी को, जो पानी की कमी को है, बढ़ा सकता है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है सखियाँ, कि घर का माहौल और टाइमिंग, यानी कि दोपहर के वक्त बाहर जाने से बचें, घर में रहें। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच में, जब धूप सबसे तेज होती है, बिना जरूरी काम के बाहर ना निकलें और निकलने से बचें। अपने परिवार के लोगों को भी बचाएं। घर को ठंडा रखने के लिए दिन के समय खिड़कियों पर पर्दे गिरा कर रखें, ताकि गर्म हवा अंदर ना आ सके। खिड़की दरवाज़ा बंद रखें और शाम को ठंडी हवा होने पर खिड़कियां खोल दें। अगर लू लगने की वजह से तेज़ बुखार या चक्कर आना, उल्टी या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो, तो बिना लापरवाही किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर इतनी सारी एहतियात आप बरतेंगी तो खुद को और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को इस गर्मी से बचा पाएंगी। और आइए फिर से सुनते हैं गीत।

सखियों, अब आइए बात करते हैं शक्ति ऋण योजना के बारे में। क्या है शक्ति ऋण योजना? तो ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी महिला अपना रोजगार शुरू करने के लिए किसी भी सरकारी यानी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण ले सकती है, जिससे अपना व्यवसाय शुरू कर सके, अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सके, साकार कर सके, साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ही ये योजना चलाई जा रही है, ताकि महिलाएं वित्तीय रूप से मजबूत बने। महिला उद्यमियों के लिए शक्ति ऋण योजना के तहत कोई भी महिलाएं ऋण लेकर अपने कारोबार के लिए बाधा रहित प्रक्रियाओं के साथ आकर्षक ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं। शक्ति ऋण योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद देता है। ये ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाता है और व्यक्तिगत महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को ये ऋण दिया जाता है। तो सखियां, अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहती हैं या कोई रोज़गार शुरू करना चाहती हैं, तो अपने किसी पास के सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक में जाइए और ये ऋण लीजिए और अपना व्यवसाय शुरू करिए। और इसी बातचीत के साथ अब अपनी सहेली विनीता सिंह को दीजिए अनुमति। सखियों, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, अब आइए आपको लेकर चलते हैं
1: प्रणाम ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सभे संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़न कि TRE4 खातिर अधिसूचना जल्दी जारी कल जाय। पटना में संवाददातन से बातचीत करत श्री तिवारी कहले कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखस जल्दी TRE4 परीक्षा के शेड्यूल

0: जारी कल जाय। वो कहले कि शिक्षक भर्ती के प्रक्रिया विधि सम्मत हुई। पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के लेकर शिक्षा मंत्री कहले कि बाहरी तत्वन के उकसावे में आके अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन ना करस। एकरा पहले शिक्षक अभ्यर्थियन आज पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के लगे प्रदर्शन कैले। प्रदर्शन जुलूस निकाले के दौरान प्रदर्शनकारियन के पुलिस के साथ झड़प भी भइल। राज्य सरकार प्रदेश में नया अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हवाई संपर्क बढ़ावे की नीति के तहत इंडिगो एयरलाइंस के गया जी से बैंकॉक खातिर सीधा उड़ान के अनुमति दे दिले बिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में आज भइल राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में यही प्रस्ताव के स्वीकार कइल गइल। बैठक में अलग अलग विभागन के कई गो निवेश प्रस्तावन के भी मंजूरी दिहल गइल बा। संग ही औरंगाबाद, अरवल और सहरसा में खेल के ढांचा सुधारे और स्टेडियम बनावे खातिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जमीन ट्रांसफर करे के प्रस्ताव के भी मंजूरी मिल गइल बा। खास बात आज भइल ई कि कैबिनेट बैठक में कुल 13 एजेंडा पर मोहर लागल गइल। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह कहले बाड़ी कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियन के उत्तम प्रशिक्षण खातिर देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानन और अकादमियन में भेजल जाए। सुश्री सिंह पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियन के इस संबंध में आवश्यक कदम उठावे के निर्देश दिहले बाड़ी। खेल मंत्री कहली कि विभागीय कार्यक्रम के नियमित समीक्षा खातिर प्रत्येक सोमवार और बुधवार के बैठक हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकन के स्कैन कैल गैल प्रतियन खातिर आवेदन करे के अंतिम तिथि एक दिन औरी बढ़ा देले बा। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकताड़न। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आज बुलावल गैल हड़ताल के असर प्रदेश में भी देखल गैल। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ हड़ताल के समर्थन देले बा। ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदेश में भी अधिकांश जगहन पर दवा के दुकान आज बंद रखल गइल बा। हालांकि ई दौरान सब प्रमुख फार्मेसी, अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुलल बाड़न सा। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवन में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के आयोजन कल जा रहल बा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के एह योजना के तहत गांवन में शिविर लगा के विभिन्न कल्याणकारी योजनावन के लाभार्थियन सबसे आवेदन लिहल जा रहल बा और उनकरा के सरकारी सुविधावन के लाभ पहुंचावल जा रहल बा। प्रदेश के विभिन्न जिलन में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवन में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगन के जानकारी दिहल जा रहल बा। ई आयोजन 25 मई तक चली। प्रदेश के अधिकांश भागन में भीषण गर्मी की स्थिति बनल बा। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागन में अधिकांश स्थानन पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गइल बा। मौसम विभाग अगिला 24 घंटा के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिला में लू चले के आशंका के लेके रेड अलर्ट जारी कैले बा। विभाग के रिपोर्ट के अनुसार पिछला 24 घंटा के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर के भभुआ प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहल। एने विभाग सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्व भागन में कई स्थानन पर आज आंधी, पानी और वज्रपात के आशंका जतैले बा। रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल अंतर्गत मकराइन डालमिया नगर और अकोढ़ी गोला क्षेत्र से पुलिस अवैध बालू खनन से जुड़ल 3 लोगन के गिरफ्तार कर लिहलस। SDM नीलेश कुमार के नेतृत्व में छापामारी के कार्रवाई कैल गई। राज्य सरकार आज ब्रांड बिहार पहल के घोषणा कैले बिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत बतौले कि राज्य व्यापी पहल के तहत प्रदेश में निवेश, नवाचारी और मौका के बढ़ावा पर जोर दिहल जाए। ई पहल के कमान खुद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत संभारिये। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: FM9 के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:10 हो चुके हैं, लीजिए सुनिए।

गांव घर कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम। किसान भाई, देखी गर्मी तो मतलब अपन का कहल जाओ आखिरी पारा पर चल रहल बाटे, 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहल बा। एकरा में देखी हमनी के अपना के, अपना परिवार के, अपना माल मवेशी के, हमनी के हमें काफ़ी ध्यान रखे के बा। काहे कि देखी लू लगल पर कोनो अकिल काम ना करेला, तो ऐसे अगर माल मवेशी भी बात और धूप में ना निकाली, उन्हीं के खिला पिला के घर में अंदर कर दी, धूप से मतलब उन्हीं के ज़्यादा दिक्कत होला, लू लग जाए तो फिर बीमारी बढ़ जाए। एकरा बाद रउआ घर में बच्चा होख सन उन्हीं पर ध्यान दही, जो बूढ़ बुजुर्ग बा ओकरा पर भी ध्यान देवे के बा। आ खासकर देखी सबसे पहले अपना पर ध्यान देवे के बा, काहे कि रउआ कहीं भी जा तनी, मानी घर के जो सदस्य बा एक तरह से कहीं गार्जियन बा, ओकरा मतलब हर काम खातिर बाहर जाए के बा। लेकिन बाहर जाए के मतलब कि सावधानी बरत के जाई, अच्छा से पूरा मतलब शरीर अपना ढक के, माथा ढक के, तौलिया लेके माथा पर, या जे औरत भी अपना सब ढक के उतप के साड़ी आँचल से। आ एकरा बाद रउरा पानी अपने पास हमेशा रखी, आ जौन सब्जी फल में आजकल ज़्यादा पानी मिलता रहता उ चीज़ जरूर खाई, तरबूजा उरबूजा जैसे हो गई, खीरा ककड़ी हो गई, वो तरह के फल के सेवन ज़्यादा करी जना में कि पानी ज़्यादा रहता। आ एक बात और श्रोता भाई कि अपना साथे पानी जरूर लेके चली, जैसे मान ली कहूँ ऐसा जगह पर भी आदमी जाला जहाँ हर जगह पानी उपलब्ध नहीं खे, तो रउरा साथे पानी अगर बोतल के रही तो रउरा कहीं भी पी सकीला, लू लागे के संभावना ज़्यादा रहेला। आजकल देखी सत्तू के शरबत, आम के शरबत, नींबू पानी, ये सब के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब लिक्विड ज़्यादा लेते रही, तरल पदार्थ के ज़्यादा सेवन करी, इससे रउरा लू लागे के संभावना बहुत कम रहेला। आ देखी श्रोता भाई, मधुमक्खी जौन बाड़ी सन, मधुमक्खी के जौन बाड़ी सन एगो सामाजिक कीट है मधुमक्खी, जौन के मुख्य रूप से परागण आ शहद उत्पादन खातिर जानल जाला। मधुमक्खियन के बारे में बहुत सारा जानकारी बाटे, जैसे मधुमक्खियन के मुख्य रूप से छत्ता में ओकर कार्य या नस्ल के आधार पर वर्गीकृत कल जाला। रानी मधुमक्खी बाड़ी सन छत्ता के एकमात्र पूर्ण विकसित मादा होखेली सन, एकर मुख्य कार्य केवल अंडा दिहल होखेला, एक दिन में लगभग 1500 से 2000 तक अंडा दे सकेली सन, और एकर जीवन काल 2 से 5 वर्ष तक हो सकेला। नर मधुमक्खी जे बाटे छत्ता में मौजूद जौन बाटे नर होखेलन, एकर काम केवल रानी मक्खी के साथ मतलब अंडा पैदा करे में मतलब देवे में काम करेला। आ देखी एकरा में डंक ना होखेला, आ ई शहद इकट्ठा ना करे। श्रमिक कामगार मधुमक्खी जौन बा ई संख्या में सबसे अधिक आ बांझ मादा होखेली सन, छत्ता के साफ सफाई, बच्चन के देखभाल, शहद आ पराग इकट्ठा कर छत्ता के सुरक्षा कर एकर ही काम होखेला। प्रजातियन के आधार पर भी एकरा के सारंग भी कहल जाला। बहुत बड़ी मधुमक्खी होली सन जौन की खुला में बड़ा छत्ता बनावेली सन, आ बहुत आक्रामक होखेला आ शहद बहुत ज़्यादा देवेली सन। एपिस मेलिफेरा ई व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक पावल जाए वाला मधुमक्खी होली सन, आ शांत स्वभाव के होखेली सन, एकरा से शहद के उत्पादन जौन बाटे अच्छा होखेला। एकरा के भारतीय मधुमक्खी भी एपिक इंडिका जौन बाड़ी सन, एकरा के भारतीय मधुमक्खी कहल जाला। ई मध्यम आकार के होली सन, एकरा के आसानी से लकड़ी के बक्सन में पालल जा सकेला। एक होली सन एपिस फ्लोरिया लिटिल बी, ई बहुत छोटा मधुमक्खी होली सन जौन की झाड़ियन में छोटा छाता बनावेली सन, आ शहद बहुत कम मात्रा में देवेली सन। तो ये तो देखी मधुमक्खियन के प्रकार हो गई। अब इन्हीं से का लाभ बाटे, तो जौन परागण बाटे मधुमक्खी जौन बड़ी सन फूल आ फसल में के परागण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभावेली सन, एकरे चलते ही कृषि आ फल के उत्पादन में कई गुना वृद्धि होखेला। शहद जौन बा एगो प्राकृतिक आ पौष्टिक आहार है, जेकर कई आयुर्वेद

दवा आ सौंदर्य प्रसाधन में भी काम आवेला। मोम जौन बा छत्ता से प्राप्त मोम के उपयोग जौन बाटे मोमबत्ती सौंदर्य प्रसाधन पॉलिश आ दवा के निर्माण में भी होखेला। एकरा बाद रॉयल जेली जौन पॉलिश होला ईरानी मक्खी के आहार होला, स्वास्थ्य खातिर बहुत गुणकारी होखेला। एकरा अलावा मधुमक्खी के डंक के उपयोग कुछ खास प्रकार के चिकित्सा उपचार में भी कल जाला। आर्थिक आय जौन बाटे मधुमक्खी पालन में कम लागत आ कम जगह में एकरा के शुरू कल जाला आ एक बेहतरीन लाभदायक व्यवसाय बा जौन कि ग्रामीण क्षेत्र में आय के प्रमुख साधन होला। तो ये तो देखिए इन्हीं के लाभ हो गई, अब इन्हीं से हानि भी होला। हानि ये बा कि डंक मारे लीसन, जब मधुमक्खी के खतरा महसूस होला वो डंक मारे लीसन, एकरा डंक से त्वचा पर तेज दर्द सूजन खुजली होखेला। कुछ लोग के मधुमक्खी के डंक से गंभीर एलर्जी भी हो सकेला जौन कि जानलेवा भी हो सकेला। एकरा अलावा कच्चा शहद खाए से भी कुछ लोग में एलर्जी के समस्या हो सकेला। रोग आ जहर के जोखिम जौन बा कभी कभी जहरीली मधुमक्खी जैसे अफ्रीकीकृत मधुमक्खी बाड़ी सन इंसान या जानवर पर झुंड में हमला कर देवेली सन, फसलन के भी नुकसान कर ली सन। हालांकि यह बहुत दुर्लभ बा लेकिन कभी कभी छाता के आसपास रहे वाला मधुमक्खी के झुंड जौन बा फल के रस के चूस के ओकरा के नुकसान पहुँचावेली सन। मधुमक्खियन के पारिस्थितिक तंत्र के एगो अनिवार्य हिस्सा है, एकरा से होखे वाला लाभ जौन बाटे हानि के तुलना में अधिक बा। आ देखिए विश्व मधुमक्खी दिवस जौन बाटे आज के दिन हमनी के पूरा विश्व भर में हर साल 20 मई के दुनिया भर में मनावल जाला। यह दिन के मुख्य उद्देश्य ये बा कि पारिस्थितिक तंत्र के संतुलित रखे आ खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियन अन्य पराग गणकन के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता फैलावल। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के लगभग 75% से अधिक फसलन में परागण खातिर एक छोटा जीव पर आदमी निर्भर करलन। आ देखिए दिवस के कुछ विशेष बाटे बात कि काहे चुनल गई बा दिन। ये दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता जौन रहन स्लोवेनिया के एंटोन जानसा, उनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जौन बाटे एकरा के विश्व दिवस मनावल जाला। एकर उद्देश्य बाटे मानव गतिविधियन के कीटनाशकन आ जलवायु परिवर्तन के चलते विलुप्त होखल मधुमक्खियन के प्रजातियन के बचावल आ एकरा संरक्षण के बढ़ावा दिहल। प्राकृतिक संतुलन जौन बाटे रउआ मधुमक्खियन न केवल शहद आ मोम देवेली सन बल्कि फल आ सब्जी आ बीजन के उत्पादन में भी भूमिका निभावेली सन। देखिए रउरा आसपास अगर बगीचा में अधिक से अधिक फूल वाला पौधा लगाई ताकि मधुमक्खी के पराग जौन बाटे रउरा के मिल सके। कृषि या बागवानी में हानिकारक कीटनाशकन के उपयोग जौन बाटे रउआ कम कर दी। आ रउरा मधुमक्खी और प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दिहल चाहतनी तब कृषि या बागवानी में हानिकारक कम कर दी। स्थानीय जैविक शहद खरीदी जौना से स्थानीय मधुमक्खी पालकन के बढ़ावा मिले। तो देखी श्रोता भैया अभी हमने के जानत रही जा कि मधुमक्खी के कितना प्रकार होला ओकरा से का लाभ आ का हानि बा। अब विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनावल जाला अब हमने के तनी मन मनसाइन कल जाओ, चलल जाओ गीत गौनई के दुनिया में आ हमने के गीत गौनई सुनल जाओ। आज के कलाकार बानी आरती माला तो सुने के यहाँ से।

0: देखी श्रोता भाई, अभी हमने के बड़ा बढ़िया गीत सुनत रही जाए। इतना बढ़िया गीत सुनावला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई, देखी पेड़ पौधा जौन बाटे एकर हमने के जीवन में बहुत महत्व बाटे। यहाँ तक कि जौन हमने के सांस ले तनी जा वो भी हमने के पेड़ पौधा से ले तनी जा, यानी कि ऑक्सीजन से ले तनी जा। ऑक्सीजन जौन हमने के ले तनी जा तो हमने के पेड़ पौधा से मिलता। यह बा कि कोनो पेड़ से ज़्यादा मिला कोनो पेड़ से कम मिला, लेकिन पेड़ पौधा हमने खातिर बहुत जरूरी बा। यहाँ तक कि पेड़ पौधा नहीं, छोटा छोटा पौधा भी जब बाटे, जैसे तुलसी के पौधा हो गई, इस तरह के पौधा जौन बाटे वो हमने खातिर मन बहुत ऑक्सीजन देवेला। हर घर में देखी तुलसी जरूर आदमी लगावेलन, चाहे पूजा के भेव से लगावस, चाहे ऑक्सीजन के भेव से लगावस, चाहे जवना भी भेव से लगावस, लेकिन हमने खातिर बहुत फायदेमंद बाटे। ऐसे पेड़ पौधा के हमने के जीवन में काफ़ी महत्व बा पर्यावरण सुरक्षित रखे खातिर। तो देखी आज हमने के वृक्ष के हमने के जीवन में कितना महत्व बा, एकरा बारे में हमने के वार्ता के माध्यम से जानल जाई एकरा बारे में। आ एकर वार्ताकार बानी भूपेंद्र नारायण सिंह, त सुने के यहाँ से।
1: काल के बाद सर्वप्रथम यहाँ पेड़ पौधे ही जीव के रूप में विकसित हुए। वृक्षों के जन्म के हजारों वर्ष बाद अन्य जीव जंतु धरती पर आए, ऐसा शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है। वृक्षों के बिना धरा पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि यह कहा जाए कि वृक्ष हैं तभी जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वृक्षों से उत्सर्जित प्राणवायु ऑक्सीजन के सहारे ही धरती पर जीवन कायम है। मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक कदम पर वृक्षों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्ष हमारे सबसे लाभदायक मित्र हैं। वृक्षों के महत्व को समझकर ही अपने देश में आदिकाल से ही इनकी पूजा की जाती है। वृक्षों में ईश्वर का वास है, ऐसी भावनाएं यहाँ के लोगों के बीच व्याप्त हैं। वृक्षों से हमें शुद्ध वायु तो प्राप्त होता ही है, अनेकों प्रकार के फल फूल वस्त्र इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। वृक्षों के प्रभाव से वर्षा का पृथ्वी पर आगमन होता है। जहाँ वृक्षों की संख्या पर्याप्त होती है वहाँ भूजल स्तर भी सामान्य होता है। मिट्टी के कटाव को रोकने में वृक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृक्षों की हरियाली में ही मानव की खुशहाली छिपी होती है। जिस भूभाग पर वृक्षों की संख्या अधिक होती है उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ एवं खुशहाल होते हैं। पेड़ पौधे स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रस्तुत करते हैं। मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन वस्त्र एवं आवास हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने आसपास जहाँ भी अनुकूल स्थान हो वहाँ वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, अर्थात वृक्ष अपने परिवार के सदस्यों से भी हमारे लिए अधिक फलदायी होते हैं। वनाच्छादित क्षेत्रों में वर्षानुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, साथ ही उस क्षेत्र में भू जलस्तर भी ऊपर होता है। वृक्ष केवल जंगलों की ही नहीं बल्कि प्रत्येक वैसे क्षेत्रों की भी ज़रूरत है जहां मानव निवास करते हैं। सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य सैकड़ों वर्षों पूर्व से होते आ रहा है। इस कार्य से मनुष्यों को कितना आराम होता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। धूप एवं बरसात से बचकर राहगीर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं। विकास की अंधी दौड़ में आज मनुष्य अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज के 5 दशक पूर्व जहां केवल ईंधन एवं आवासीय ज़रूरतों के लिए वृक्षों की कटाई होती थी, वहीं हाल के दशकों में विकास के नाम पर वृक्षों का दोहन अनवरत जारी है। पेड़ों की कटाई से संपूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक समस्या से जूझ रहा है। वृक्षों की कमी का असर मानसून को भी प्रभावित कर रहा है।

जिसके फलस्वरूप अतिवृष्टि व अनावृष्टि के क्षेत्र में इलाके बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वृक्ष लगाने एवं वृक्ष बचाने के नाम पर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, फिर भी जमीनी सच्चाई इससे अलग है। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद वृक्षों की संख्या कागजों में ही सिमट कर रह जाती है और जमीन वीरान ही रह जाती है। दूसरी तरफ वृक्षों की कटाई बेरोक टोक जारी है। जिस रफ्तार से वृक्षों की कटाई हो रही है, वृक्षारोपण की रफ्तार काफ़ी धीमी है। ऐसा होने से पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। बाढ़ और सुखाड़ इसी असंतुलन की वानगी है। भू जलस्तर का लगातार खिसकना और जानलेवा गर्मी एवं आंधी तूफानों की श्रृंखला भी पर्यावरण असंतुलन के ही दुष्परिणाम हैं, जिससे मानव जीवन कराह रहा। लेकिन इस गंभीर वर्तमान एवं भयावह भविष्य के प्रति हम लोग लापरवाह हैं। प्रकृति के अनमोल उपहार के रूप में मानव को वृक्षों जैसा पालक प्राप्त हुआ है। वृक्षों से मानव की सर्वाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आदिकाल से ही वनौषधियों के प्रयोग से मानव जीवन लाभान्वित होता रहा है, लेकिन जीवन प्रदायी वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या बढ़ाने की ओर आम जनजीवन का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम अब एक समारोह आयोजित करने का शगल बनकर रह गया है। कभी कभार कहीं विद्यालय के छात्रों द्वारा तो कहीं किसी राजनेता या अधिकारी द्वारा दो चार पौधे लगाकर वृक्ष लगाओ अभियान की इतिश्री कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगलों से लेकर गांवों तक में वर्षों पूर्व से लहराते वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वृक्षों की कटाई और नए वृक्षों को लगाने के बीच दिनानुदिन खाई बढ़ती चली जा रही है। इस असंतुलन से उत्पन्न स्थिति को लेकर हमारी लापरवाही इस समस्या को और भी गंभीर बना रही है। चूँकि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वृक्षों से प्राप्त सामग्रियों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इसलिए हम यह मान बैठते हैं कि बगैर वृक्षों की कटाई के कार्य संपन्न नहीं हो सकता। चाहे गृह निर्माण के काम हो, उद्योग धंधों की स्थापना हो अथवा किसी भी प्रकार के विकास कार्य हो, लकड़ी की जरूरत होती है। आज चाहे एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील, फाइबर आदि से जितनी भी सामग्रियों के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन लकड़ी के फर्नीचरों की कोई सानी नहीं है। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने हेतु हम लोग लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, इसके लिए वृक्षों की कटाई होती है। इस कार्य में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो वृक्ष काफ़ी पुराने और काटने योग्य हों, उन्हें ही काटी जाए और इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाए। हरे वृक्षों एवं बगैर अनुमति के वृक्षों की कटाई कानूनन जुर्म है और इसके लिए अर्थदंड से लेकर जेल तक की सज़ा निर्धारित है। साथ ही हमें एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि जितनी संख्या में वृक्षों की कटाई हो, उससे कहीं अधिक नए वृक्षों को लगाने का भी कार्य हो, तभी हम पर्यावरण संतुलन को कायम रख सकते हैं। बरसात के इस मौसम को वृक्षों के पौध लगाने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस समय लगाए गए पौधों को प्रकृति से पानी प्राप्त हो जाता है, जिससे उनकी जड़ें मिट्टी को आसानी से पकड़ लेती हैं और 70% पौधे जीवित बच जाते हैं। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। आसपास जितने अधिक वृक्ष होंगे, हम उतने ही स्वस्थ होंगे। इसलिए हरे वृक्षों की कटाई कभी नहीं करनी चाहिए। अगर वृक्षों की

0: कटाई आवश्यक ही हुई तो एक वृक्ष को काटने से पूर्व 10 वृक्षों को आसपास में लगाने का संकल्प लेना चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वृक्ष लगाने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। इसके लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर अधिकारी नियुक्त हैं, साथ ही अनुदान की भी व्यवस्था है। हमें वृक्षों को बचाने एवं बढ़ाने के प्रति जागरूक होना होगा, साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को भी इस कार्य में मदद करके तथा उनसे सहयोग प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हरे भरे वृक्ष लहराएंगे तभी मानव जीवन समृद्ध व खुशहाल होगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्ष जरूर लगाएं। इसी में हम सब की भलाई है।
1: देखी श्रोता भाई, कितना बढ़िया भूपेंद्र नारायण सिंह बतौनी कि वृक्षण के हमनी के जीवन में कितना महत्व बा। आ कम से कम ज़्यादा ना होके तो एक आदमी के अपना जीवन में 10 गो वृक्ष जरूर लगावे के चाहिए। हमनी के काहे कि वृक्ष जीवन बा। इतना बढ़िया जानकारी देला खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आ हमनी के देखी बातचीत आगे कर ली, लेकिन पहले कुछ संदेश सुन लेवे के
2: तक पहुँचे के सस्ता और सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल और सेवा का प्रचार,
2: स्थानीय और देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
3: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान,
2: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
3: डायल करें 8700014242।
2: नंबर फिर लिखी 8700014242।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: श्रोता भाई, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के जयंती आज है आ हर वर्ष 21 मई के मनावल जाला। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 गो प्रमुख स्तंभन में से पंत जी के एगो स्थान रहे आ उनकर जन्म 1900 में उत्तराखंड के कौसानी में भई रहे। आ यहाँ के सुमित्रा नंदन पंत के वास्तविक नाम गुसाई दत्त रहे, लेकिन यहाँ के बदल के खुद अपन नाम जौन बाटे सुमित्रा नंदन पंत रखले रहें। आ यहाँ के पालन पोषण वहाँ के दादी द्वारा भई रहे। यहाँ के प्रमुख रचना जौन बाटे उपछवास, पल्लव, मीणा, गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन और चितम्बरा है। आ देखी श्रोता भाई, समरसीबल पंप के जौन उपयोग बाटे उ पानी निकाले खातिर कल जाला। बिजली के झटका और मोटर जले जैसन दुर्घटना से बचे खातिर एकर कभी भी अनुचित या गलत उपयोग ना करे के चाहिए। कभी भी सूखा न चलाई, न तो एकरा के बिना पानी के जौन बाटे एकरा के चलाला पर एकर मोटर जल जाला, ऐसे एकरा के बिना पानी के कभी न जलाई। आ देखी श्रोता भाई, अब हमनी के चला चलत एक नज़र कल के मौसम के पूर्वानुमान पर डाल लेवे के कि कल मौसम के का आई रही। तो देखी अधिकतम तापमान जौन बाटे 43 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहे के संभावना बा। अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 60% और न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 15%। हवा के गति जौन बाटे प्रति मतलब घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चले के संभावना बा। आ देखी कोनो तरह के मौसम के तरफ से कोनो तरह के चेतावनी नहीं खे, मतलब आंधी पानी या कोई वज्रपात ही सबके। तो ये रहल देखी मौसम संबंधी जानकारी। आ अब हमनी के समय हो गई रउआ सभी से विदा लेवे के। तो चले चले के बेरा में सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम गांव घर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अब अगला कार्यक्रम भोजपुरी फिल्मी गीतों का सांझ गीत। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में और सुनते हैं पहला गीत धरती कहे पुकार के इस फिल्म से।

धरती कह पुकार के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। पामेला जैन, कल्पना और मनोज तिवारी और अमित की आवाज़ों में, विनय बिहारी के बोल, धनंजय मिश्रा का संगीत। अब आइए सुनते हैं अगला गीत, धरती कह, माफ़ कीजिएगा, रखवाला फिल्म का ये गीत हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं, आइए सुनते हैं।

राजा बाबू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आलोक कुमार और खुशबू जैन की आवाज़ों में। राजेश मिश्रा का लिखा गीत था और छोटे बाबा का संगीत था। इसके पहले आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का गीत, जावेद अली की आवाज़ थी, प्यारे लाल यादव का लिखा गीत था, धनंजय मिश्रा का संगीत था। अब आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में अनजान का लिखा गीत, चित्रगुप्त का संगीत, रूठ गई ले सैया हमार इस फिल्म से।

0: और श्रोता, इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम सांझगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भाई सुनते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
1: के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से 7 दिनों के बाद आज बुधवार का दिन है और हम कार्यक्रम में पैरामेडिकल है पारस लेकर आप सबों के घर आंगन में आ चुके हैं बातें करने की। पैरामेडिकल का कोर्स, ANM GNM का कोर्स, ये सारा

0: कोर्स जो है ना आपके जीवन में एक नई गति ला सकता है यदि आपने तरीके से पढ़ाई की। पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम लेकर आते आते वर्षों निकल गया, लगातार ये कार्यक्रम जी हाँ चल रहा है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस लाइन के ठीक सामने। हाँ, यहाँ आप आकर मिल सकते हैं और ढेर सारी जानकारियां भी ले सकते हैं। कहते हैं ना साथियों कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अगर जो आपने टेक्निकल पढ़ाई की तो आपके लिए रास्ते, हाँ रास्ते बहुत तरीके से खुल जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो और भी संभावनाएं हैं, आप पढ़ते पढ़ते रोजगार पा सकते हैं, अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर निजी क्षेत्र में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन संस्थान का चुनाव हाँ बहुत सावधानी से करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहां से संस्थान एफिलिएटेड है, क्लासरूम स्टडी की क्या व्यवस्था है, प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था है, लाइब्रेरी, किताबें बहुत महंगी होती हैं, किताबों के लिए क्या करना होगा, सब कुछ ठोक बजा के एकदम ठोक बजा के देखना होगा, फिर दाखिला लेना होगा और जोरदार पढ़ाई करनी होगी। बहरहाल चलिए, आज हमारे साथ यहाँ कौन है आपको बताएं, और वो हैं श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इन्हीं से इनका परिचय, लेकिन उससे पहले हम नंबर बताना चाहेंगे जिस पर आप फोन करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर, दो नंबर बताएंगे, आप नोट कीजिए नंबर, और अगर आपके पास नंबर है तो कोई बात ही नहीं है। पहला नंबर है 9162 41 32 33, 9162 41 32 33, और दूसरा नंबर है 9155558888, यानी 9 1 4 5 और 4 8। चलिए मुलाकात करते हैं वाइस प्रिंसिपल साहब से और जानते हैं इनके विषय में। पहले फिर सवाल।
1: सर, मेरा नाम केशव कुमार डागुरा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में लास्ट ईयर से वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर पोस्टेड हूँ, और मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, नर्सिंग में एक अच्छा करियर,
0: नर्सिंग में एक अच्छा करियर है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई केशव जी?
1: मैं सर जीवाजी यूनिवर्सिटी 2013 में पास आउट हूँ वहाँ से, और MSc नर्सिंग मेरा KS कॉलेज ऑफ नर्सिंग MPMSU से क्लियर किया हूँ।
0: बातचीत तो होती ही रहेगी, लेकिन ये बताइए कि बिहार आके राजस्थान से कैसा लग रहा है?
1: बिहार आके काफी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे नर्सिंग में और पैरामेडिकल क्षेत्र में हम लोग कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ बेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को एजुकेशन के मामले में।
0: अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप यहाँ बाहर से आए हैं, हमारे पूरे बिहार के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा है?
1: श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर एजुकेशनली माहौल एकदम, सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, लैब्स हमारे यहाँ जितनी भी हैं वो अवेलेबल हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, और मैं यही कहूँगा सभी बच्चों को, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ है अभी, और सर भी बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, बच्चे को हर तरह से सपोर्ट मिलता है।
0: अच्छा अब चलते लौटते हैं BSc नर्सिंग कोर्स की तरफ, BSc नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी दीजिए बच्चों।
1: BSc नर्सिंग सर एक 4 ईयर का कोर्स होता है, इसके लिए इंटर में 12th में बायोलॉजी का होना जरूरी होता है। इसमें गवर्नमेंट भी, सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारा वैकेंसीज होता है, आर्मी होता है, डिफेंस का जितना भी वैकेंसी होता है, एम्स होता है, ESIC हॉस्पिटल होता है, आजकल CHO 2020 से एक कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट पोस्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका दिल्ली से संचालन होता है, बच्चा CHO भी पोस्टेड होता है, एक PSC होता है गाँव में सर, जहाँ पे अंडर 5000 पॉपुलेशन होता है वहाँ पर CHO को पोस्टेड किया जाता है।
0: आपने बड़े अच्छे से बताया कि बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं BSc नर्सिंग की पढ़ाई करके, और 4 साल का कोर्स है आपने बताया, और जो इंटर में बायोलॉजी के साथ जिसने किया है वो यहाँ आ सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन दो बातें हम अपने सुनने वालों से

0: कर लें। कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल हिपारस और इस वक्त हमारे साथ केशव कुमार डांगुर साहब बैठे हैं जो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं और अभी बातचीत चल रही है बीएससी नर्सिंग जैसा कि अभी अभी हमने बताया और कहां कहां आप प्लेस्ड हो सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, यानी एंड ऑफ द डे रोजगार ही चाहिए आपको, है ना, तो वो भी जानकारी दी है। अगर आपको और भी विशेष जानकारी चाहिए तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी संस्थान के डायरेक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं और उनका नंबर है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो आज पहली बार सुन रहे हैं, उनको बता दें कि ये पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अपना बिल्डिंग है जहां क्लासेस चलते हैं, सारी गतिविधियां होती हैं। अपना श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहां प्रैक्टिकल कराई जाती है। प्रैक्टिकल से ही एक सवाल हम आपसे पूछते हैं क्योंकि टेक्निकल कोर्स है हेल्थ का, इसमें प्रैक्टिकल का कितना बड़ा रोल होता है?
1: मेरा मानना यह है सर, प्रैक्टिकल का इसमें 100% रोल होता है। बच्चा अगर उसको हॉस्पिटल में जाके ऑन पेशेंट करेगा या ऑन डमी करेगा, उसके लिए हमारे यहाँ कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, लैब में डमी पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद पेशेंट के पास बच्चे को भेजा जाता है जिससे टेक्निकली फेस टू फेस बच्चा पेशेंट को हैंडल करेगा, तो इससे ये चीज़ें सीखने को मिलती है सर।
0: कब से प्रैक्टिकल शुरू होता है? हम तो सुने हैं कि श्री राज में जब बच्चे आते हैं तो एडमिशन हुआ और उनकी व्यवहारिक शिक्षा शुरू हो जाती है।
1: जी सर, ऐसा ही है, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर 3 मंथ्स बच्चे को फर्स्ट एजुकेशन थ्योरी का स्टडी कराया जाता है, पीटीएस एग्जाम होता है, उस एग्जाम के जस्ट बाद उनका आवरली इसमें होता है सर। हम लोग टोटल बच्चे को आवर के अकॉर्डिंग, ईयरली अकेडमिक अकॉर्डिंग भेजा जाता है बच्चे को हॉस्पिटल ड्यूटी में। अप्रोक्स 10 मंथ उसको कंटिन्यू हॉस्पिटल में ही रहना होता है, 6 आवर ड्यूटी।
0: अच्छा, आपका इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल का कैंपस तो एक ही में है?
1: यस सर।
0: तो बच्चों को इसका लाभ तो मिलता होगा?
1: बिल्कुल, बच्चों को लाभ भी मिलता है, बच्चों को नाइट ड्यूटी भी, हम लोग जो भी सीखने का इच्छुक होता है हॉस्पिटल में उसको अलग से भी सर का सपोर्ट होता है, चेयरमैन सर का, टीचर्स लोगों का भी सपोर्ट होता है, सारी चीजें बच्चे को अच्छे से लर्न कराई जाती है प्रैक्टिकल के लिए सर।
0: अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है केशव जी, हम लोग भी जब स्टूडेंट रहे थे, आप भी रहे होंगे,
1: जी जी सर,
0: स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जरूरी होता है,
0: फ्रेंडली। तो क्या टीचर एकदम खौफ के साथ रहते हैं या बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर?
1: नहीं सर, टीचर्स जो होता है, कम्युनिकेशन गैप हमारे नर्सिंग में एक टॉपिक होता है सर, जिसमें बच्चे का बिहेवियर, उसके कम्प्लीट जो हैबिचुअल है, उन सारी चीजों को टीचर्स सर्विलेंस करते हैं, निगरानी में रखते हैं, अच्छे से देखते हैं, और जो गैप मेंटेन होना चाहिए टीचर्स स्टूडेंट के बीच में वो होता है एजुकेशनली गैप और बिहेवियर को लेके। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर्स होगा, सभी बच्चे को अच्छे से हैंडल करते हैं, पोलाइटली हैंडल करते हैं,
0: यानी एकदम प्रैक्टिकल, एकदम बिहेवियर जो है फ्रेंड और टीचर का है बावजूद।
1: बिल्कुल सर,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: फ्रेंडली माहौल है।
1: बिल्कुल,
0: आपको क्या लगता है कि बच्चे जो आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जो ख्वाब लेके आते हैं, जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ, आपके इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़े तो बच्चे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं?
1: बिल्कुल सर, मैं यही बोलना चाहूँगा, बच्चे अच्छा मेहनत करेंगे, बच्चे और गार्जियन का भी उसमें सपोर्ट होता है सर, और बच्चों को भी स्टडी करना होगा, ये 4 ईयर ही होता है बच्चे की एक एज के अकॉर्डिंग, जो स्टडी जो उसका फ्यूचर बना सकती है।
0: जी बिल्कुल,
1: उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को, राज इंस्टीट्यूट में एक बार आइए और वहाँ पर देखिए स्टडी का, प्रैक्टिकल का, उसके बाद सभी बच्चों का उम्मीद यही है कि 99% उनका फ्यूचर बनेगा सर।
0: फ्यूचर बनेगा। हालांकि हम एक जानकारी और दे दें आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टर साहब को, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी को फोन किया कि हम लोग पटना नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने गुरौल में भी वैसे लोगों के लिए, एक समाज का विकास हो सके, बच्चे गांव के भी आगे बढ़ सके, इसके लिए इन्होंने गुरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो श्री राज ग्रुप का ही है, उन्होंने गुरौल में स्थापित किया है, वहां भी आप इसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं 9162413233 और दूसरा 9155558888। वाइस प्रिंसिपल साहब केशव जी, एक सवाल जो हमारे आपके घर में भी होता रहा है, बच्चों को अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में कहें तो करियर चुनने की आजादी नहीं होती है, उनके माँ बाप का

0: बहुत बड़ा रोल होता है, बड़े भाई बहन का होता है, जो हम समझते हैं कुछ हद तक गलत है, सजेशन देना चाहिए। ऐसे में पूरा बिहार सुन रहा है, बात कीजिए कि ये गलत है या सही अपने हिसाब से।
1: मैं सभी गार्जियन से एक ही बात बोलना चाहूँगा, बच्चे पर बिलीव रखना है, बच्चे को अच्छा स्टडी के लिए लाइफ एक बार मिलता है किसी भी इंसान को
0: जी।
1: तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरा यही रिक्वेस्ट है।
0: और जो कोर्स वो चुनना चाहते हैं
1: जी,
0: उस पे लिबर्टी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल मिलनी चाहिए सर, बच्चे की जो चॉइस है, बच्चा जिस चीज में जाना चाहता है उसको बिल्कुल गार्जियन को देना चाहिए और उसको आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए।
0: अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे केशव जी, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत हमसे ज्यादा बच्चों के साथ आप रह चुके हैं।
1: जी सर।
0: बहुत सारे बच्चे इनडिसिसिव होते हैं, जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाते और प्लेन स्टडी को चुन लेते हैं। मसलन बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या इस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर इसकी जगह वो टेक्निकल कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होता
1: जी।
0: तो वैसे बच्चों के लिए संदेश की अगर आप कंफ्यूजन है आपके पास, तो आप किसी बड़े से, किसी एक्सपीरियंस आदमी से मदद ले सकते हैं। और इस वक्त रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, तो बताइए उन लोगों को।
1: मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा सर, जैसे चाइना है, अमेरिका जिस डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर एजुकेशन का मेन रोल है सर, उस चीज़ में टेक्निकल एजुकेशन का। वहाँ पर बच्चे को ही सिखाया जाता है बाज कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें उनको स्टार्टिंग से लर्न कराई जाती हैं। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि बीएससी नर्सिंग एक टेक्निकल कोर्स होता है, इसमें आकर वो आगे बढ़ें और अपना फ्यूचर बनाएं।
0: आगे बढ़ें और फ्यूचर बनाएं। आप राजस्थान से बिहार आ गए, कैसा लग रहा है?
1: जी सर, बहुत अच्छा लग रहा
0: है। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद केशव कुमार डागुर साहब।
1: थैंक यू सर।
2: ये केशव जी थे जो वाइस प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। एक बात बताएं, टेक्निकल पढ़ाई में इतनी अपॉर्चुनिटी है, जैसे देखिए इन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की और बिहार में आकर ये अपना योगदान दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और श्रीराज ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं। लगातार बच्चों में बीएससी नर्सिंग या टेक्निकल पढ़ाई के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बहरहाल साथियों, बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही वाइब्रेंट है, एएनएम जीएनएम ये बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है। अगर जो आपने इसे चुन लिया तो आपके लिए रोजगार की कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अलावे अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो ढेर सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आ गया है। सारी चीजों की जानकारी के लिए आप डायल कर सकते हैं 9162413233 या 9155558888 ये नंबर है। इस पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से आपकी बातचीत हो जाएगी और श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो प्रोग्राम ला रहा हूँ, ये संस्थान बहुत ही उम्दा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है और अच्छे जगह से एफिलिएटेड है, हॉस्टल की सुविधा है। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो फोन से बात कर सकते हैं और आकर मिल सकते भी हैं। नंबर हमने आपको बता ही दिया है, एक नंबर फिर से बता दे रहा हूं, 9155558888। और अब राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों

इंटाइलमेंट वितरण एवं सभी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु आवेदन प्राप्त करना। रोहतास सासाराम बिहार, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के अंतर्गत रोहतास जिला के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस क्रम में चेनारी, नौहट्टा, सासाराम, रोहतास एवं तिलौथू प्रखंड अंतर्गत आज दिनांक 20 मई 2026 को 19 गांवों में कुल 127 आवेदन प्राप्त किया गया और 47 को एंटाइटलमेंट वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ एवं जनजातीय समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाओं, शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा जागरूकता गतिविधियों की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करना है। घर घर जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के जानकारी देते हुए वंचित परिवारों से आवेदन प्राप्त किया गया है। कार्यक्रम में उप निदेशक कल्याण मगध प्रमंडल गया, जिला कल्याण पदाधिकारी रोहतास, रोहतास प्रखंड के सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी, विकास मित्र, स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक प्यारा गीत, राम तेरी गंगा मैली से लता मंगेशकर की आवाज़ में, हसरत जयपुरी की रचना, रविंद्र जैन का संगीत।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: उपभोक्तन तक पहुंचे के सस्ता असुलभ आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहीओ के बुलंदियन के पांख
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुंचे का विकल्प
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ
0: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर
1: जी हां नंबर बा 8700014242
2: और श्रोताओं इसी के साथ सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। श्रोताओं अब आइए आपको लेकर चलते हैं प्रादेशिक समाचार के लिए आकाशवाणी के पटना केंद्र।

0: समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे

स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इधर आइए, इधर
1: इधर।
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 के अभ्यर्थी तैयारी करें, जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। ऑनलाइन दवा बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर दवा दुकानदारों की हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। और राज्य के कई भागों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में कई निवेश प्रस्तावों को आज मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैमूर के कुदरा में पावर प्लांट और ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

0: कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नालंदा जिले के बेन में बॉयल राइस्ड उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
1: उद्योग विभाग का दो मामला था, एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई, और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मेसर्स ईएसई एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड खुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत इंडिगो को गया जी से बैंकॉक सीधी उड़ान की अनुमति दे दी है। श्री चौधरी ने बताया कि एक अन्य फैसले में औरंगाबाद, अरवल और सहरसा में खेल संरचना के विकास और स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
1: अगले एजेंडा राजस्व और भूमि सुधार विभाग के थे, जिसमें अरवल, औरंगाबाद एवं सहरसा जिले में खेल के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण तथा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि की हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है।
0: कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE-4 के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखें, तैयारी करें, जल्द TRE-4 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विधि सम्मत होगी। पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी तत्वों के उकसावे में आकर अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन न करें।
2: हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा फिर एक अपील है, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। आपने ये सरकार बनाई है, ये सरकार आपकी है, इसीलिए आप जाइए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। सरकार बहुत जल्दी आपके सपने को साकार करने जा रही है। आप इसको लेकर के कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है, और आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग है, जो लोग अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने आज पटना के सिन्हा रोड स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य भवन और बुद्ध मार्ग स्थित अकादमिक भवन में पूछताछ सह शिकायत निवारण केंद्र का उद्घाटन भी किया। शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है।
3: जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, और उसे मुझे जाके देखने का भी अवसर मिला कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा और नई खुशी प्रदान की।
0: इधर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज TRE-4 परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर पटना में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समीप अशोक राजपथ पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जुलूस निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के लिए देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में भेजा जाएगा। सुश्री सिंह ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार और बुधवार को बैठक होगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। हड़ताल के समर्थन में बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ से जुड़े दुकानदारों ने प्रदेश में अधिकांश दवा दुकानें आज बंद रखीं। यह हड़ताल ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री में नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध आयोजित की गई है। हड़ताली दवा दुकानदारों ने कहा है कि मजबूर होकर उन्होंने हड़ताल किया है।
4: ऑनलाइन में आज के डेट में आप AI के जमाने में किसी भी तरह का डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको दवाएं घर पर पहुँच जाएगी। उसका कुपरिणाम क्या हो रहा है कि बहुत तरह की नशीली दवाएं, बहुत तरह की प्रतिबंधित दवाएं, जरूरी दवाएं इसके द्वारा आ रहा है। आज हमारा डिमांड है कि जो कायदा कानून हमारे रिटेलर, हमारे होलसेलर के लिए बना हुआ है, वही कायदा कानून ऑनलाइन वाले के लिए

0: हो।
1: हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया है कि जिले में मेडिकल स्टोर बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अन्य जिलों में भी दवा दुकानें बंद रहीं। इस दौरान सभी प्रमुख अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले रहे हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवों में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह आयोजन 25 मई तक चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की व्यवस्था की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIN News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आज ब्रांड बिहार पहल की घोषणा की। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्यव्यापी इस पहल के तहत प्रदेश में निवेश, नवाचार और अवसरों के विस्तार को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व स्वयं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत करेंगे। पटना स्थित मुख्य सचिवालय में आयोजित बैठक में आज ब्रांड बिहार पहल से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आगामी 25 मई से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करेगा। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कराकर नियोजन संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सहकारिता मंत्री और दानापुर से स्थानीय विधायक रामकृपाल यादव ने आज क्षेत्र में बरसात के दौरान संभावित जल जमाव की समस्या से निपटने की व्यवस्था की समीक्षा की। दानापुर अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में SDM अनिरुद्ध पांडे समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। श्री यादव ने अधिकारियों को जल जमाव और अतिक्रमण की समस्या से निपटने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकांश स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।

0: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व भाग अररिया, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, गोपालगंज एवं रोहतास जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर आज आंधी पानी और वज्रपात की आशंका जताई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर 22 मई को 7 समर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, अगरतला और न्यू जलपाईगुड़ी समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न भागों से राजधानी दिल्ली तक चलाई जाएगी। कटिहार रेल मंडल प्रवर वाणिज्य प्रबंधक अनुप कुमार सिंह ने बताया कि 26 मई को इन ट्रेनों की वापसी होगी।
2: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कटिहार मंडल से दो जोड़ी ट्रेनें जो कि नई दिल्ली और आनंद विहार

0: अगरतला और न्यू जलपाईगुड़ी समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न भागों से राजधानी दिल्ली तक चलाई जाएगी। कटिहार रेल मंडल प्रवर वाणिज्य प्रबंधक अनुप कुमार सिंह ने बताया कि 26 मई को इन ट्रेनों की वापसी होगी।
1: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कटिहार मंडल से दो जोड़ी ट्रेनें जो कि नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलाई जाएंगी। ऐसे ही पांच और जोड़ी ट्रेनें हैं जो NFR रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली या आनंद विहार के लिए चलाई जा रही हैं। और इनमें जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो सारी ट्रेनें वाया कटिहार NJP होते हुए जाएंगी। NFR से जाने वाली ट्रेनें जो हैं विभिन्न स्टेशनों से खुलेंगी, वो 22 तारीख को यहाँ से चलेंगी और वो दिल्ली या आनंद विहार टर्मिनल को पहुंचेंगी। जो वहां से वापस आने वाली ट्रेनें हैं वो 26 तारीख को वहां से चलेंगी।
0: विशेष निगरानी इकाई की टीम ने सहरसा जिले के महेशी अंचल कार्यालय के अंतर्गत बेलाही और सिरवार हलका के राजस्व कर्मचारी श्याम प्रसाद सिंह को 16,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने इस मामले में दलाल की भूमिका निभा रहे फूलचंद साह को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर जमीन की रसीद काटने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। ADG निगरानी पंकज कुमार दराद ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनी गांव से पुलिस ने बैंक ऋण लौटाने में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर जिले में पुलिस लाइन के समीप सड़क पर आज एक पेड़ गिर गया। इस घटना में एक महिला घायल हो गई। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल भेजा और सड़क से पेड़ की टहनियों के हटाने के निर्देश दिए। सुपौल जिले के बीरपुर में नगर पट्टी सीमा चौकी के समीप SSB और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी के पास से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर और एक देशी पिस्तौल बरामद किया गया है। सीमा सड़क संगठन के अपर महानिदेशक जितेंद्र प्रसाद ने आज भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बन रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। श्री प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि जून के प्रथम सप्ताह में बेली ब्रिज पर छोटे वाहनों का परिचालन शुरू कर दिए जाने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा TRE4 के अभ्यर्थी तैयारी करें, जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। ऑनलाइन दवा बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर दवा दुकानदारों की हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। और राज्य के कई भागों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: इधर आइए। इधर
3: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
5: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।
6: सारण जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम से शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी

0: 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की प्रगति की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से की जाएगी। इधर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गंगा नदी के किनारे कटाव और संभावित बाढ़ की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संभावित कटाव स्थलों को चिन्हित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने और राहत की व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा चिन्हित कटाव स्थलों पर वृक्षारोपण और जल संरक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है। सारण जिला के मस्तीचक में संचालित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार और आधुनिकीकरण लाने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी ने 150 करोड़ रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 3,30,000 सर्जरी की जाएंगी और करीब 1,000 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण सेवा के लिए 10 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। जिले में कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यव्यापी फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून 2026 तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत किसानों को डिजिटल पहचान दी जा रही है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बीते दिनों सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जिले में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की और सड़क, स्वास्थ्य और रेलवे परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके।
1: और अब प्रस्तुत है सिवान जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
2: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इन शिविरों का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। शिविर में जिलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में आम लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। बीते दिनों जिले में हुए ज्वेलरी कांड, लूट कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि लूट कांड के मुख्य आरोपी अंकित कुमार सिंह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंकित कुमार सिंह घायल हो गया। इसके बाद अपराधी को इलाज के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना भेजा गया है। हाल ही में गृह विभाग ने जिले में 2 पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। स्वीकृति मिलने के बाद जिले में 2 पुलिस अधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद जिले के लोगों ने कहा कि बढ़ते अपराध और सांप्रदायिक मामलों पर नियंत्रण के लिए सरकार का यह कदम काफी अहम है। कई सामाजिक और राजनीतिक दलों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जिले में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों और लैब के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष टीम गठित की गई है, जो जिले भर में निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अब तक कई निजी अस्पतालों और लैबों के अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें करीब 50 अस्पताल और लैब संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइसिकल पर छूट देने के फैसले के बाद सिवान में महिलाओं के बीच उत्साह बढ़ गया है। शोरूम पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस पर महिलाओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कम खर्च में सुरक्षित सफर संभव होगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के उद्देश्य से फार्मर आईडी बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब 1,16,711 किसानों को पंजीकरण किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना फार्मर आईडी बनवा लें, ताकि बिना किसी रुकावट के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
1: अभी आप सुन रहे थे सारण और सिवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह, जबकि सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
3: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद।

0: शाम के 7:50 हुए हैं और यही वो वक्त है जब हमारी आपसे मुलाकात होती है उस प्रोग्राम को लेकर जिसे आप खुद सजाते हैं, आप संवारते हैं और आप ही सुनते हैं। जी हाँ, आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं हेलो मन पसंद। न जाने क्यों आती है याद आपकी, चुरा ले जाती है आँखों से नींद हमारी। अब यही ख्याल रहता है सुबह शाम, कब होगी आपसे मुलाकात हमारी। तो दोस्तों, ये मुलाकात का वक्त हो चुका है और इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हो चुका। हम हैं आपकी खिदमत में आज, आपका अपना ओम प्रकाश। नमस्ते। फ़ोन की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई हैं। देखते हैं आज कौन कौन से हमारे श्रोता और किस खूबसूरत गानों से इस कार्यक्रम को सजाया है। तो आइए लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार,
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, खिराम बारा जिला जमुई बिहार।
0: जमुई बिहार से बोल रहे हैं, कैसे हैं अनवर भाई?
1: सर मजे में, और आपसे बात करके वाकई भी अच्छे हो गए। आलिफ का एक बड़ा मशहूर शेर है कि देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हम आपसे बात करते हैं और शांत हो जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बस अपने दिल से जानिए दूसरे दिल की हाल। आपसे बात कर कर हमें भी बहुत खुशी हुई, वैसे तो अच्छे थे और आपसे मुलाकात हुई तो हम और भी अच्छे हो गए अनवर भाई। और बताइए कौन सा गाना सुनाएं हम आपको आज अपने श्रोताओं के लिए भी?
1: फिल्म निकाह का सुना दीजिए, सलमा आगा की आवाज़, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए।
0: फिल्म निकाह का ये गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सलमा आगा की आवाज़ है। हिट फिल्म का ये हिट नगमा रहा है अनवर भाई, और आज भी शायद लोग सुनेंगे आपके ख्वाहिश पर, तो इस गाने को बड़ी पसंद करेंगे, बड़े प्यार से इस गीत को सुनेंगे, है ना?
1: और हमारे दोस्त हैं हसीना मंसूरी, नजमा नौशाद, पूनम रजनी बसंती और शेर जफर हसन।
0: जी जी, तो आइए अब हम लोग आपके दोस्तों के साथ, तमाम श्रोताओं के साथ सुनते हैं निकाह फिल्म का ये हिट नगमा।

0: हेलो मनपसंद, ओम प्रकाश का आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं और कौन साहब बोल रहे हैं?
1: नमस्कार। मेरी पहली मतलब आपसे बात हो रही है। एक हफ्ते पहले आप प्रोग्राम चला रहे थे, प्रोग्राम मैंने सुना था आपका।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: जी, मैं मस्त क्लब तकिया मरियाव जिला जौनपुर से जमील अहमद शाह का दोस्त महसूब कुमार प्रजापति करौता लोटा वाराणसी, यानी सर मैं उत्तर प्रदेश काशी नगरी बनारस यूपी 65 से बात कर रहा हूँ। सीधा कॉल मेरी सासाराम आकाशवाणी में आपकी पसंद में बातचीत हो रही है। प्यार वाला नमस्कार।
0: अशोक कुमार प्रजापति जी, क्या करते हैं आप?
1: जी हम सिलाई करते रहते हैं, प्रोग्राम सासाराम का सुनते रहते हैं।
0: सिलाई करके साहब आप तो कपड़ों से कपड़ों को जोड़ दिया करते हैं, है ना?
1: देखिए, भगवान ने हुनर सभी को अंदाज अंदाज से सिखाया है कि हम लोग सीख के नहीं आते हैं, बाकी एक दूसरे से
0: सीख
1: सीख
0: लेते
1: लेते
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ हाँ कैसा मौसम है आजकल वहां का जहां आप रह रहे हैं?
1: सर हम लोग को तो धरती पर 3 समय मिला है, और गर्मी बरसात और जाना काम रे, और धूप तो बहुत तेज है सर।
0: हाँ, धूप से बच के रहिएगा फिलहाल। आप बताइए आज अशोक जी क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? कौन सा गीत?
1: वही मार गई महंगाई।
0: और आइए आपकी पसंद का ये गीत हम लोग सुनकर अपने तमाम श्रोताओं के साथ सुनते हैं और दिलों से दिलों को जोड़ते हैं।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद सर, प्रणाम।
0: जी। प्रणाम। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम खरवत गांव नोखा से बोल रहे हैं
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी। मोतीमाला हम बोल रहे हैं।
0: मोतीमाला जी। हम साहब लिफाफ देखकर जो अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसे भी पढ़ लेने वाले हैं। आप शायद हमारी आवाज़ सुनकर शायद पहुंच सकें हम तक। मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ साहब
1: प्रणाम
0: जी। प्रणाम
1: प्रणाम।
0: प्रणाम।
1: आवाज तो अपने अंदर हो गया है ना आपका, माइक पर बोल रहा है तो आवाज में अंतर हो रहा है।
0: जी। कैसे हैं मोती जी, और बताइए।
1: और सब सर ठीक है, बढ़िया है। बड़ी गर्मी बाकी पड़ रही है, अपना बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है और धूप भी बहुत तेज है।
1: धूप भी,
0: धूप
1: हाँ धूप बहुत कड़ा है, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है, लोग परेशान है बिल्कुल एकदम।
0: इस परेशानी में तो बचना ही है, धूप से भी बचना है और गर्मी से भी। पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए आजकल हम लोगों को, ताकि हम स्वस्थ रहें और धूप से बचे। जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो मोती जी, तो हम समझते हैं कि धूप में निकलना ज़रूरी नहीं है, और निकले भी तो बिल्कुल गमछा और किसी न किसी कपड़े से सर को ढक के निकले, है ना?
1: ढाक निकलना
0: हाँ
1: चाहिए
0: हाँ
1: जी
0: बिल्कुल।
1: सर।
0: और बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मौसम फिल्म का एक गाना है, दिए ढूंढता है फिर वही
0: वही
1: फुर्सत के
0: वही
1: दिन
0: सर,
1: रात।
0: बहुत खूबसूरत ये गीत है। तो आइए इस हिट फिल्म का ये हिट नगमा हम।
1: राजकिशोर चौहान जी हैं, लालगंज वाले, और इसके बाद लाल बिहारी जी हैं। ये लोगों को गाना बहुत पसंद है।
0: चलिए ये आप तमाम दोस्तों के तिकड़ी के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद जी, सर जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: अशोक सिंह जी कैसे हैं? अशोक जी से
1: सर, आप कैसे हैं? आप
0: बस बढ़िया हैं, और आप लोगों के बीच जब आते हैं तो और भी बढ़िया हो जाते हैं। अशोक जी
1: सर बढ़िया हो गए, आपसे बात हो रही तो और अच्छा लग रहा सर। यहाँ गर्मी का भी मजा ले रहे हैं, 44 डिग्री लगभग है।
0: अब बस कुछ ही दिन की बात है, ये 44 डिग्री का आनंद लिया जाए और इस 44 डिग्री से बचा भी जाए, है ना?
1: जी सर।
0: हाँ, धूप से बचिए और गर्मी से बचिए, पानी का अधिक से अधिक व्यवहार कीजिए ताकि स्वस्थ रहा जाए,
1: और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखे।
0: हाँ, सबका ध्यान रखना है इस गर्मी में। कुछ ही दिन की बात है, फिर बहुत बढ़िया मौसम हो जाएगा और सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अभी भी अच्छा है ना?
1: जी सर।
0: ईश्वर का दिया हुआ सभी मौसम का आनंद लेना चाहिए। अब आप ये बताइए साहब, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं?
1: स्वीकार किया मैंने।
0: स्वीकार किया मैंने,
1: हाँ, अजनबी कौन हो तुम,
0: कौन हो तुम?
1: मैंने तुझे देखा है।
0: क्या बात है, क्या बात है।

0: खूबसूरत गीत है, हमारे तमाम श्रोता सुनेंगे तो बहुत
1: प्रसन्न हो जाएगा
0: मन
1: सर।
0: प्रसन्न हो जाएगा, और आपने अशोक जी सबको प्रसन्न कर दिया इस गीत को सुनवाकर, है ना। मेहरबानी, हम पर बनी रहे, आकाशवाणी सासाराम से आप
1: सर वो
0: जुड़े रहें।
1: पाले सबका आशीर्वाद बने रहे, आप स्वस्थ रहो मस्त रहो,
0: जी जी
1: हरिओम
0: जी
1: केस करते रहो।
0: जी अशोक जी, आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो मन पसंद।
1: हेलो मनपसंद
0: प्रणाम सर, प्रणाम। कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: राम सर, हम बोल रहे हैं शमशाद आलम जमरोर से।
0: ग्राम जमरोड़ से शमशाद आलम भाई बोल रहे हैं, दिनारा के पास जो जमरोड़ गांव है वही। बोलिए, आप क्या करते हैं शमशाद जी?
1: हम बाहर रहते हैं सूरत सर जी।
0: सूरत रहते हैं। आजकल कहाँ, आप सूरत से ही बोल रहे हैं या जमरोड़ से बोल रहे हैं?
1: घर पर है, घर पर।
0: अच्छा, आए हुए हैं। अच्छा, क्या करते हैं सूरत में?
1: सूरत में कढ़ाई का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी का।
0: अच्छा, वहीं पर रहते हैं। पूरी फैमिली के साथ रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं?
1: अकेला रहते हैं।
0: अकेले रहते हैं। और सभी फैमिली के सदस्य जो हैं वो गांव में जमरे रहते हैं?

0: बोलिए, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? आज
1: हम सुनना चाहते हैं आशिकी फिल्म का गाना सर जी।
0: आशिकी फिल्म का कौन सा गीत?
1: हाँ, आशिकी फिल्म का गाना सुना दीजिएगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
0: धीरे धीरे से
1: दिल को चुराना।
0: जी जी, वो जो गाना है आपके दिल तक हम पहुंचा रहे हैं अपने तमाम श्रोताओं के साथ, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हाँ सर, खुरमाबाद रोहतास से, खुरमाबाद बाजार से।
1: खुरमाबाद बाजार से आप कौन साहब बोल रहे हैं?
0: भरत चौरसिया, खुरमाबाद।
1: भरत चौरसिया?
0: हाँ सर, कुसुम देवी, प्रियंका कुमारी, रानी चौरसिया, भरत चौरसिया
1: जी।
0: सर मेरा एक गाना सुनवा दीजिए।
1: बिल्कुल, आपका गाना आप तक हम पहुँचाएंगे। पहले ये बताइए भरत जी कि आप आजकल क्या करते हैं?
0: दुकान है सर, मेरा छोटा दुकान है।
1: कोई भी दुकान है, छोटा या बड़ा नहीं, आपका परिवार जिससे चल रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छा व्यवसाय है। आज आप सुनना चाहते हैं किस फिल्म का गाना?
0: सर गाना सुना दीजिए, मेरा साया को, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
1: मेरा साया फिल्म का बहुत खूबसूरत गीत है साहब, आप जानते होंगे और आप पसंद किए हुए हैं। जी जी, हमारे तमाम श्रोता सुनेंगे इस गाने को आज आपकी ख्वाहिश पर, तो बड़ी खुश होंगे। लीजिए सुनिए भरत जी अपनी पसंद पर ये गीत।
2: झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा।

0: हेलो मनपसंद
1: नमस्कार सर।
0: जी। नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: शेख जफर हसन कुआत जिला रोहतास।
0: जफर हसन जी बोल रहे हैं
1: जी, कुआत शेख जफर हसन कुआत जिला रोहतास
0: जी, कुआत से बोल रहे हैं साहब जफर जी।
1: जी
0: आपके कुआत की बेलग्रामी बड़ी मशहूर है ना?
1: बेलग्रामी ना
0: जी
1: जी, आप पहचान गए।
0: हम भी आएंगे तो आपसे मुलाकात करना चाहेंगे। जफर हसन जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। से बात हो रही है ओम प्रकाश के साथ
1: जी।
0: तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: इरशाद सुनिए
0: जी।
1: जब आपकी याद आती है तो
0: जी
1: आंखों में आंसू आ जाते हैं।
0: क्या बात है।
1: जब आपकी याद आती है तो आंख में आंसू आ जाते हैं
0: जी,
1: मगर क्या करें, आपकी तस्वीर देखकर मुस्कुरा लेते हैं।
0: क्या बात है जफर साहब, आपसे मिलकर आपसे बातें कर पता नहीं हमें भी कुछ कहने को दिल करता है, और वो दिल ये कहता है आपसे कहने की कि न जाने कौन सी दौलत है आपके लहजे में। गौर कीजिएगा, न जाने कौन सी दौलत है आपके लहजे में, जब जब बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं। चलिए अब आपने दोस्तों के नाम ले लीजिए
1: जी, गाना तो सुन लीजिए। फिल्म का नाम है दीदार, उसमें मोहम्मद रफी ने गाया था।
0: दीदार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद।
0: अपने दोस्तों के नाम ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये बाकी के श्रोता भी लाइन में हैं।
1: अकरम हुसैन परवीन
0: जी,
1: बिहार के मोहम्मद आसिफ खान
0: जी,
1: पूरा मऊ के उस्मान अली अंसारी
0: जी,
1: भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार और अनवर बिहारी।
0: तो लीजिए आप अपने तमाम श्रोता दोस्तों के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो
0: जी, बोला जाए साहब। कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मनपसंद,
0: जिला रोहतास के किस जगह से? अजमल
1: मेरा नाम अजमल
0: जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जिला रोहतास के किस जगह से बोल रहे हैं?
1: है। मेरा गांव का नाम है त्रिविगा,
0: और बताइए, तब आप क्या करते हैं?
1: ये बाढ़ प्लांट में काम करता है।
0: अच्छा, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, किस फिल्म का?
1: गाना सुना दीजिएगा, ये आशिक फिल्म है ना, नजर के सामने जिगर
0: आशिकी फिल्म का नज़र के सामने जिगर के पास ना,
1: पास। जी,
0: बड़ी आशिकाना ये गीत है।
1: हम बहुत पुराना सोचते हैं, हमेशा
0: हाँ
1: कॉल भी लगाते हैं।
0: हाँ तो चलिए, आज भी आपका कॉल लग गया और आप अपनी पसंद का सुनिए ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी। तुकाराम
0: महाराष्ट्र से आप कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जाधव।
0: बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके तुकाराम यादव
1: ठीक
0: जी।
1: है, आप कैसे सर जी?
0: बहुत बढ़िया है, और आपसे बात करके तो और बढ़िया हो गए।
1: आपका
0: और
1: सासाराम परिवार।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी सासाराम परिवार आपके उम्मीद में और आपके इंतज़ार में यहाँ बैठा हुआ है, और आपकी ख्वाहिश आप तक पहुँचाने के लिए भी हम लोग तत्पर हैं। जल्दी से आप बताएं कि किस फिल्म का गाना और कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मेरा गांव मेरा देश।
0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का कौन सा गीत?
1: आई शर्मा तुझे कैसे कैसे बता
0: हाय
1: अपनी प्रेम।
0: हाय, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत आपने चुना है आज साहब।
1: गर्मी का क्या है हाल उधर?
0: गर्मी तो बहुत है, धूप से भी बचना है, गर्मी से भी बचना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप महाराष्ट्र में भी धूप और गर्मी आजकल ज्यादा होगी।
1: जी। कुछ मित्रों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: हाँ बिल्कुल, ले लीजिए
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी।
1: हमारे मित्र है पीएस राज शेळके जी, सुनील बुधे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेळके जी, श्रीकांत भंडारे जी, उदय पाटील सारुकर जी, धनंजय पटेले जी, रमेश जाधव जी, उदय काळे जी, किरण शिंदे जी, रामचंद्र कोकाटे जी, आर्यन पाटील सर जी और सतीश गाड़गे जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
0: चलिए अपने दोस्तों के साथ सुनिए अपनी पसंद मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत।

तो अब इसी के साथ हेलो मनपसंद कार्यक्रम से आज अपने ओम प्रकाश को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। श्रोता दोस्तों, हर बुधवार को रिकॉर्डिंग की जाती है, वैसे तो हमारे तमाम श्रोता जानते हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता नहीं जानते हैं और हम चाहते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना दिल मांगे मोर, तो और भी चाहते हैं नए श्रोता हमसे जुड़ें और हम नए श्रोताओं के भी हो जाएं। इसके लिए हमें बताना होगा और हम बता रहे हैं कि हर बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रिकॉर्डिंग की जाती है और रिकॉर्डिंग का फ़ोन नंबर है, आप नोट कर लें, 0618421130। आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर से नंबर दोहरा दें, 0618421130। अब इसी के साथ हेलो मनपसंद आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इसका शेष भाग आप सुनेंगे शनिवार को शाम 7:50 पर। नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो मनपसंद। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप समाचार संध्या के लिए आइए, आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी

0: साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA

0: उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनके

संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएमबैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 9 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय गायन में सितार वादन। सुर सौरभ के अंतर्गत शाहिद परवेज से तबला संगत है विजय घाटे का राग झिंझोटी में।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला। आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: और श्रोता, इसी के साथ शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम सुर सौरभ अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। आइए चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराये, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।
1: सर,

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत

ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर एस एल भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया बी.वी. कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुबी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ति, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: हिंदी और कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अभिनय करने वाले गिरीश कर्नाड एक मराठी फिल्म में भी मुख्य सहायक अभिनेता थे। वो मराठी फिल्म थी उंबरठा।
1: हे भगवान,

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

ओंदनंदु कलदल्ली कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसरंग।

क्या खूब बनाया है ये गीत आपने सुना, साधना सरगम और अज़म अली मुकर्रम की आवाज़ में दया राम और फिरोजाबादी का ये लिखा गीत था, अज़म अली मुकर्रम का संगीत था। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ममता शर्मा की आवाज़ में, अशरफ अली के बोल, अशरफ अली का संगीत।

तेरा प्यार मिले ना मिले, ये गीत हम सुन रहे थे आयुष्मान चौधरी और राजमणि से। नरेश कुमार त्यागी का ये लिखा गीत था, नरेश कुमार त्यागी का ही संगीत था। अगला गीत हम सुनेंगे मेरी आशिकी, रीना मेहता और देव नेगी से, शैलेंद्र शर्मा के बोल और गुफी का संगीत।

मेरी अश के ये गीत आप सुन रहे थे रीना मेहता और देव नेगी की आवाज़ों में, शैलेंद्र शर्मा के बोल गोपी का संगीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे नगमा सुनेंगे, लेकिन सुनते हैं ये संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

चांद निकला है, ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे अजमली और अजमली मुकर्रम की आवाज़ में। अफसर डिकानी का लिखा गीत था, अजमली का संगीत था। अब आइए सुनते अगला गीत, इश्क हमारा रूहानी, ब्रज सरवरी और उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ों में, सिया सचदेव के बोल, गोविंद भत्री का संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रसरंग कार्यक्रम में इश्क हमारा रूहानी ये गीत, और इसी के साथ हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

एक ही फिल्म दिलवाले से ये सभी गाने आप सुन रहे थे। पहला गीत आपने जो सुना, जो तुम्हें चाहे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में समीर के

बोल नदीम सरवण का संगीत। दूसरा गीत हमने इसी फिल्म से सुनवाया, कितना हसीन चेहरा, कुमार सानू की आवाज़ थी, समीर के बोल थे, नदीम सरवण का संगीत था। मौका मिलेगा तो ये गीत आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम सरवण। और कार्यक्रम के अंत में अभी आपने सुना सातों जन्म में तेरे, दिलवाले फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें, समीर के बोल और नदीम सरवण का संगीत। श्रोताओं, इसी के साथ हिंदी फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सफ़र चित्रपट तराने का अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:55 होने वाले हैं। श्रोताओं, आइए आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे देते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत होगी 5:53 पर वंदे मातरम से। सुबह 6 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार आप सुनेंगे और 6:05 पर हम चलेंगे विविध भारती के स्टूडियो और सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस संगीत सरता और भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेगा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। 8:00 दिल्ली से समाचार प्रभात का प्रसारण होगा और 8:15 पर आप सुनेगा देशभक्ति संगीत। 8:20 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी। सुबह 8:45 पर पटना से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा और 9:06 पर कार्यक्रमों की आपको जानकारी देंगे जो कि आगे प्रसारित होंगे और 9:10 पर गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। आज के फनकार कार्यक्रम विविध भारती से आप सुनेगा 9:30 पर और 10:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। सुबह 10:05 पर साहित्यिकी में हिंदी कार्यक्रम में आप सुनिएगा वार्ता, विषय होगा महिलाओं को घरेलू हिंसा से कानूनी संरक्षण, वार्ताकार होंगे जनक राज किशोरी और कहानी में गंगा सुनिएगा, कहानीकार होंगे विनय कुमार विनय। 10:30 पर लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोकगीत आप सुनेंगे और 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग लेकर हम हाजिर होंगे। दिन में 11:00 हम चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनिएगा विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। शाम 5:10 पर आप सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और 5:30 पर युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे युवाणी। इसमें हमारी बात में हिंसा समाधान नहीं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आप सुनेंगे राजीव गांधी का जीवन परिचय, डेथ एनिवर्सरी पर ये आपको सुनवाए जाएंगे। करियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। 6:00 भोजपुरी लोकगीत आप सुनेगा। 6:05 पर पटना से भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होगा और 6:10 पर हम लेकर आएंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें आज की बातें में वार्ता सुनिएगा खरीफ फसलों में ध्यान देने योग्य बातें वार्ताकार डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह से। नया दौर नई बातें में वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी और नसीहत में सुनिएगा समरसेबुल का अनुचित प्रयोग न करें। कार्यक्रम में सूत्रधार होंगे प्रवीण कुमार दुबे और संध्या सिंह। 6:40 पर आप सुनिएगा सांझगीत में भोजपुरी फिल्मी नगमे और 7:15 पर हम लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा जो हमारे केंद्र से रिले होगा। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा। रात्रि 9:00 हम लेकर आएंगे लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत। रात्रि 9:15 पर महफिल में गजलों का आनंद लीजिएगा और रात्रि 9:30 पर आज के फनकार

0: कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से। रात्रि 10 बजे हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे रसरंग, और रात्रि 10:30 पर आप सुनेगा हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी, और रात्रि 11 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर, सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार के लिए आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज

0: सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज चैट बाय अपराजिता नायर। इंडिया एंड इटली टुडे फाइनलाइज्ड 15 आउटकम्स अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। द अग्रीमेंट्स वर साइंड फॉलोइंग डेलीगेशन लेवल टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इटालियन काउंटर पार्ट जॉर्जिया मेलानी इन रोम टुडे। The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dongyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज कंग्रेचुलेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर बीइंग ऑनर्ड विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीकोला मेडल। In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisher folk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is said to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Pitele, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulidis, along